और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है। इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में विश्राम तो यही मिलेगा आके। काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में, भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधावल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते।
ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से। जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव, शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो, तो का रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे हैं, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे, बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन अधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध,
प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लालजू महाराज हमारी महारानी जी के कैसे अधीन है, वचन अधीन सदा रहे। लाडली जी का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन अधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहां की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे।
कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप। सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं, हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित है, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है। वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सहरा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मरण, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं है कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है।

साधु, यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और आह्वान का फल आपको मिल रहा है, जैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से संध्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो, गाढ़े से

कहने अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर, तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे को ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरंते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या है, तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है। ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में है, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है,

0: लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाए। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हा लैला जलेबी, अब जितनी दुकान वाले हैं और सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं, जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं, तो वहां रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स है उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें? और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली है। कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं तो वहां रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का, तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया, गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पहले पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा करके उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था। तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरु जी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: सेलिब्रेशन ने इंग्लैंड के मैच की टिकटें भेजी हैं।
1: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
2: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मीन्स जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
3: नहीं,
2: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही लेकिन वो सुधरने लगेगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
1: कई बार जब मैं आपको सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो भाई पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है आपके। आई नो हाल चाल बहुत ही बेहतर होने वाले हैं आज के दिन, बिकॉज हम लोग आ गए हैं वीकेंड में, और जब वीकेंड में आते हैं ना तो बस कुछ नहीं नजर आता, एनर्जी वैसे ही डबल हो जाती है, बिकॉज वीकेंड ना हमें ये बताने के लिए आता है कि बहुत काम कर लिया, फाइनली अब टाइम हो गया रेस्ट करने का, अपने लिए टाइम निकालने का, और हाँ जो करना चाहते हो ना वो चीज करने का। तो भाई रेडियो महारानी पर आज चेंज लिया गई है, तो बातें तो बहुत सारी होने वाली है, एंटरटेनमेंट का डोज भी आपको डबल मिलने वाला है, साथ ही बॉलीवुड का तड़का मिलेगा, इंटरेस्टिंग बातों के साथ मिलने वाली है फिटनेस का फंडा भी। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाले चाय की गर्मा गर्म सिप लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुबह 7 बजे आई हूँ और आपके साथ 11 बजे तक रहने वाली हूँ, तो बातें तो बहुत सारी होने वाली है ना, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हेलो हेलो फरीदा बाहर, क्या हाल चाल है आप सभी के? और अगर बेहतर हाल चाल है ना, तो बेहतर हाल चाल को बेहतरीन बनाने आ गई हूँ। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज एजेंसी। और अगर मैं बात करूँ ना कि आज का वेदर क्या कहता है, आज फरीदाबाद का मौसम क्या कहता है, तो देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 34 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है 25 डिग्री। इसी के साथ अगर विंड स्पीड की बात करूँ 8 है और ह्यूमिडिटी मिलने वाली है आज आपको 59%। और देखिए दिन रहने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी गर्मी आज आपको मिलने वाली है। तो इस बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm-up at least 5 to 10 minutes minimum hona hi chahiye running se pehle. Usme aap brisk walk kar sakte hain, jogging kar sakte hain, gentle stretches kar sakte hain. Dusra point hydration ka hai. Hydration considering depend karega mausam kaisa hai, garmi kitni hai. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

हेलो हेलो जी। तो चलिए भाई, वक्त हो गया है सोशल स्यापा को, और आज का सोशल स्यापा ना वाकई स्यापा लेकर आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता था, ये जो आंटियां मोहल्ले में चुगली करती है, ये टैलेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ अपना टाइम पास करती है? यही गलत फहमी ना आज मैं दूर करने आई हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया में एक आंटी ने इसी को बिजनेस बना दिया है। तो देखा, अब हुआ ना अफसोस, जिन आंटियों को ना हम इतना कोसा कर देते कि आंटी आपके पास कोई काम नहीं है, देखे भाई उन्होंने अपने इसी काम को ना एक्चुअल में काम बना लिया और अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो देखिए, 67 इयर्स ओल्ड मिरियम नाम की इस विमेन ने ना अपने नेबरहुड के सारे सीक्रेट्स गॉसिप कलेक्ट करके ना लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, और उनका कहना है कि इसी काम से उन्होंने अब तक 2 घर खरीद लिए हैं। और वो पता है खुद को ना बहुत ही प्राउड के साथ बताते हैं कि मैं प्रोफेशनल चुगलीखोर हूं, यानी कि मैं ना गॉसिप कर सकती हूं, और मुझ जैसे गॉसिप ना शायद ही मोहल्ले में कोई दे सकता है। अब भाई आप जरूर सोचेगा कि हमारे यहाँ जिन आंटियों को हम बोलते हैं ना कि आंटी यार अपना काम करो, क्यों किसी की जिंदगी में ताक झांक कर रहे हो, अब आप उन्हें जाके बताइए कि आंटी आपकी इस टैलेंट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और यार अगर आपको कोई मौका मिले ना तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी चुगली करके ना अच्छा खासा पैसा कमाइए। क्यों 9 to 5 करना है आपको, इतनी जद्दोजहद करनी है लाइफ में, इस तरह की चुगली कीजिए, गॉसिप कीजिए, पैसा कमाइए, और हाँ अपनी लाइफ को ना और अपनी लाइफ में मजे कीजिए। लेकिन ये तो था देखिए भाई मजाक के लिए, लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहानी हमें क्या लेसन देती है। तो भाई देखिए, आज की स्टोरी हमें ये लेसन देती है, गॉसिप से पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है ना किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी ये जो कहानी है ना वो कब जाकर कहां पर ब्रॉडकास्ट हो रही हो। और इसी के साथ ही आज का सोशल स्यापा, और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बंट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

मेरी सैया जिसे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन पता है ब्रेकअप के बाद जो दुख होता है ना, जो दर्द होता है, वो दर्द जो दिल टूटने का होता है। क्या आपको पता था कि इमोशन का असर हमारे हार्ट पर भी बहुत गहरा पड़ता है। किसी ने कभी ना दिल टूटने को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया होगा। लोगों को लगता है क्या है, हील हो जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं जिंदगी में। ना, मूव ऑन नहीं हो पाता। हम अक्सर कहते हैं ना कि दिल टूट गया, लेकिन कभी कभी इंटेंस इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस का इम्पैक्ट सच में हमारे हार्ट पर पड़ सकता है। और ये जो कंडीशन में जिसकी बात कर रही हूँ ना, डॉक्टर ने इस कंडीशन का पूरा नाम बताया। दिल टूटने वाले इस कंडीशन को कहते हैं ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी। डॉक्टर जिसे आम भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस फील होता है, जैसे किसी अपने को खोने का दुख, सडन शॉक या इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस, और जिसके बाद ना हार्ट की मसल टेम्परेरली वीक हो सकती है और सिंड्रोम हार्ट अटैक जैसे फील होने लगता है। लेकिन बताए हमें गुड न्यूज क्या है, दिल टूटने के बाद भी ना प्रॉपर मेडिकल केयर के बाद आप रिकवर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कभी आपने सोचा है किसी के इंसान का हमारी जिंदगी से जाना हमारी खुद की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। इसलिए भाई आज का मैं टेक अवे लेकर आई हूँ, और आज ना आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप ये चीज आज यहाँ से लेकर जाए। स्ट्रेस को सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी होता है ना दिल टूटने के बाद, जैसे कि आपके दिल में दर्द, ब्रेथलेसनेस या फिर जितना भी अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट है ना, तो मेडिकल हेल्प जरूर लीजिए। और हाँ यार, दिल को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपके जिंदगी से चले गए उन्हें खुशी खुशी विदा कर दीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। अब वक्त है खुद से प्यार करने का, तो खुद से प्यार कीजिए, खुद को प्रायोरिटी बनाइए और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

हाँ जी, तो 9 to 5 से बोर हो गए हो ना और कमाना चाहते हो ना एक्स्ट्रा पैसा, अब कैसे कमाए? तो भाई देखिए, आज का बिजनेस मंत्रा मैं लेकर आऊंगी और आज का बिजनेस मंत्रा में ना कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बच्चों के बर्थडे प्लान करने। लेकिन ये बच्चे ना ह्यूमन बेबी नहीं है भाई, ये बच्चे हैं अपने फर बेबी। अब आपको ये तो पता होगा ना कि पेट पेरेंट आजकल अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो आज का एक फ्रेश बिजनेस आइडिया मैं लेकर आऊंगी, पेट सेलिब्रेशन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो आप, जहां पर आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि पेट बर्थडेज हो गए, अडॉप्शन एनिवर्सरी हो गई, या फिर स्मॉल गेट टुगेदर हो गया, जहाँ पर आपको एक डेकोरेशन थीम रखनी है, पेट फ्रेंडली केक्स रखने हैं, फोटो शूट कराना है और साथ ही ना कस्टमाइज रिटर्न गिफ्ट्स भी देने हैं जितने भी फर बेबीज आने वाले हैं। तो देखिए भाई, बिजनेस एकदम ऑसम है और ये बिजनेस ना चलने भी वाला है, बिकॉज जो आजकल के पेट पेरेंट है ना, वो अपने खुद के बच्चों से ज्यादा ना अपने पेट से प्यार करते हैं। सो अब देख लीजिए कि किस तरह से आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या नाम देना है। बिजनेस आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अगर चल जाता है ना तो मुझे आके जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास, तो बनी रही वीडियो हमारी 89.6 FM के साथ।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

जिंदगी में ना बहुत सारे बोनसेस के बारे में सुना, लेकिन कभी बेबी बोनस के बारे में सुना नहीं सुना ना, तो चलिए फिर सुनाते हैं आज आपको। फटाफट से चलते हैं फरीदाबाद से निकल के सिंगापुर। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ना अब लोगों के लिए बेबी बोनस लेकर आ गई। बिकॉज अगर मैं बात करूँ इस देश की, तो भाई यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ का जो बर्थ रेट है, वो बहुत ज्यादा लो हो गया है। और ये सुनने के बाद ना यहाँ की गवर्नमेंट आ गई स्ट्रेस में कि अगर जनता ही नहीं रहेगी तो देश कैसे रहेगा। अब अपने देश को बचाने के लिए ना वहाँ की फैमिलीज को अप्रोच किया है कि अगर आप बेबी प्लान करते हो तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको 52 लाख रुपए तक का सपोर्ट करेगी, जिसके अंदर बच्चे के बर्थ से लेकर 17 साल की एज तक डिफरेंट बेनिफिट्स एंड सपोर्ट के फॉर्म भी दिए जाएंगे। तो देखिए इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। जो फैमिलीज ये सोच रही थी ना कि बेबी प्लान गिरने के बाद बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा उनके ऊपर, फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, तो भाई देखिए अब आपका खर्चा उठाने वाली है आपकी सरकार, तो भाई देरी किस बात की, अभी बेबी प्लान गिर लीजिए। और यार अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा लो हो जाएगा ना देश में, वो बात नहीं रहेगी, देश के जो लोकल लोग है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए ना सरकार ने इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा उठाया है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की, ये सारे एक्सपेंसेस भी कवर होने वाले हैं। तो भाई देखिए इस कंट्री का ना सिंपल सा मैसेज है, बेबी आपका सपोर्ट हमारा। तो भाई जितने भी लोग अभी बेबी प्लान करने से डर रहे थे ना, आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। और इसी के साथ ही बहुत सारी बातें लेकर आऊंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में ना।

आज सुना एक गाना बड़ा ही जोरों से याद आ रहा है, शादी के मंडप से तो खुद को भगा। हाँ भगा, क्यों बोल रही हूँ आखिर मैं खुद को भगाने के लिए? बताती हूँ ना, कई लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है ना, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है, और ना यही किस्मत की वजह से ना एक बॉयफ्रेंड रातों रात दुल्हा बन गया। रात को गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे जनाब, सुबह तक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुल्हा बनकर अपने घर वापस आए। तो भाई देखिए, आज का सोशल स्यापा मैं लेकर आ गई हूँ, और आज का स्यापा ना हमें सीधा फरीदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर तक लेके आ गया। यहाँ पर एक प्रेमी ने रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ना प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसके गाँव में जाकर ना इसे सरप्राइज दिया जाए। लेकिन भाई गाँव वाले ये लोग ना तो अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, ना ही सामने वाले इंसान की प्रेम कहानी पूरा होने देते हैं। फिर क्या था, बस जैसे ही गांव वालों को खबर लगी ना कि अपने गांव में एक आशिक पकड़ा गया है, तो फिर क्या था, गांव वाले ने इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया, लड़के से बिना पूछे बिना उसकी फैमिली से परमिशन लेना उसकी शादी कर दी। बस भाई जो प्रेमिका थी उसकी मांग में भर दिया सिंदूर और बोल दिया कि अब से ना ये आपकी है, चाहे फिर आप इनको गांव घुमाओ चाहे फिर आप इनको शहर घुमाओ, लेकिन बेटा अब इन्हें ना यहां से अपने घर लेकर जाओ। सो बाद में क्या था, बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारा केस निपटाया, लेकिन तब तक ना शादी हो गई थी। तो भाई देखिए, शादी के मंडप से तो दुल्हन को सिर्फ दुल्हा ही भगा सकता है, और फाइनल इन दोनों की शादी हो गई है। तो रातों रात जो बॉयफ्रेंड था अब वो बन गया है दुल्हा। सीक्रेट मीटिंग इनको बहुत भारी पड़ गई, सीधा ग्रैंड वेडिंग में बदल गई। तो ये थी आज की लव स्टोरी। अगर आप भी इसी तरह की किसी लव स्टोरी को जी रही है ना, तो उसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है शायद से, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और शादी सुंदर है रेडियो महारानी 89.6 FM।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बहुत सारी बातें करती हूँ ना मैं, सुबह 7 बजे जाती हूँ और कब जाकर 11 बज जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता। और बातें बातें करते ही ना कभी कभी ना इतने अच्छे गाने होते हैं कि मैं बीच में गाने भी बजा देती हूँ। तो भाई देखिए, बातें तो मैं करती ही रहूंगी, लेकिन ना आज एक छोटी सी बात कर लेते हैं, फील गुड स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं ना, अच्छाई छोटी हो या फिर बड़ी, किसी ना किसी के चेहरे पर स्माइल जरूर लेकर आती है। और आज की फील गुड स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटी सी काइंडनेस ने एक स्ट्रेंजर का पूरा दिन बना दिया। और सबसे ब्यूटीफुल बात पता क्या है, इसके बदले ना किसी ने कुछ मांगा भी नहीं। तो भाई देखिए, कभी किसी के लिए आपने डोर होल्ड किया है? जब आप कभी किसी के लिए डोर होल्ड करते हो ना, तो सामने वाला आपको थैंक यू कहकर जाता है। और जब वो थैंक यू कहता है ना, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। बस वही स्माइल ना आपका दिन बना, बस वही स्माइल ना एक काइंडनेस का जेस्चर। और कभी आपके जेन्युइनली फील किया है कि किसी ने आपको ये पूछा हो कि आप ठीक हो, और जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, तब लगा होगा ना कि हाँ कोई मेरा भी है। तो भाई यही सारी चीजें हैं, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हमारी जिंदगी में ना हमें स्ट्रेंथ, हमें होप और पॉजिटिविटी देती है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में गुड वाइब्स बनी रहे, तो आपको बताया ना क्या करना है, आपको भी ये गुड वाइब्स सामने वाले इंसान की जिंदगी में लेकर आनी है। यानी कि एक छोटी सी चीज कीजिएगा, जब आप ऑफिस जा रहे हैं ना, और ऑफिस जा रहे हैं जो डब्बे में कुछ अच्छा लेकर आया ना, तो एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा अपने कॉलीग्स के लिए, अपने ऑफिस वाले पगलू फ्रेंड्स के लिए। और साथ ही अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं ना, तो यार किसी को लिफ्ट देते ना। बस ये छोटी सी चीजें आज कर देना, और फिर देखेगा ये जो गुड वाइब्स आप स्प्रेड कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देगा। सो इसी को कहते हैं अच्छा करो अच्छा मिलेगा। और एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी, देखिए यार, अगर अंजलि आती है ना और अपने साथ नई अपडेट ना लेकर आए तो कैसे चलेगा। सुबह 7 बजे आई थी, बहुत सारी बातें की है, लेकिन अपना टाइम हो गया ये बताने का कि आपके आसपास हो क्या रहा है। आखिर अभी तक ये सोचते थे ना कि हेलमेट लगाने की जरूरत ही क्या है अगर पीछे बैठे हैं। तो भाई देखिए, अब लगाना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं या फिर अगर आप फरीदाबाद से जा रहे हैं ना यूपी के साइड। बेसिकली नोएडा ही जाते हैं हम लोग ज्यादातर। अगर नोएडा नहीं जा रहे हैं या फिर यूपी में कहीं भी जा रहे हैं ना, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि उत्तर देश में ना अगर आप स्कूटर के पीछे बैठे हैं, बाइक के पीछे बैठे हैं, स्कूटी के पीछे बैठे हैं, तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। और ये जो रूल है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया है, यानी कि जो पीछे बैठे हुए पैसेंजर है अगर हेलमेट लगाते हुए नहीं दिखाना तो आपको ई चालान भरना पड़ेगा। तो भाई देखिए, अगर चालान से बचना है ना तो मैं बस यही रिकमेंड करूंगी कि हेलमेट जरूर कैरी करके जाइएगा। और ये आपको बताया, अगर आप हेलमेट लगाते ना तो वो आपके लिए अच्छा है। सपोज अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सर पर चोट ही नहीं आएगी, बच जाओगे ना। इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगाओ, और अगर नहीं लगाया तो 1000 रुपए तक का जो चालान है वो आपको भरना पड़ेगा, और अगर चालान नहीं भरा तो आपके लाइसेंस पे एक्शन लिया जाएगा। तो भाई देखिए, पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर ये रूल आया है तो करना तो पड़ेगा फॉलो। और इसी के साथ सुनते रहिए ये ट्रैक, मिलता है थोड़ी देर पे।

फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

यार सोना किसे पसंद नहीं है, और अगर सोने के पैसे मिल जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागा। मैं यार गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ, वो सोना नहीं, नहीं भाई नहीं। ये हम तो जेंजी है ना, हमें सिर्फ एक ही सोना समझ आता है। और इमेजिन कीजिए इतनी फुर्सत से सो रहे हैं कि अलार्म भी नहीं बज रहा, बॉस का कॉल भी नहीं आ रहा, सोने के ना पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी लाखों रुपए। तो भाई देखिए जापान में होने जा रहा है एक बेहद अनयूजुअल कॉम्पिटिशन, जिसमें कॉन्टेस्टेंट को ना बस बेड पर लेट कर 90 मिनट की बेस्ट पॉसिबल स्लीप लेनी है। और अगर कॉम्पिटिशन की बात करूँ ना, तो की स्लीप को ट्रैकिंग डिवाइस से मॉनिटर किया जाएगा और देखा जाएगा कितनी जल्दी नींद आई, स्लीप कितनी डीप थी और कितनी क्वालिटी वाली थी, और साथ ही पूरे सेशन में स्लीप कितनी स्टेबल रही। तो भाई देखिए बीच में डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट किया जाएगा ताकि पता चले कि कौन डिस्टरबेंस की वजह से अपनी नींद खराब कर चुका है। यार अगर मैं इस कॉम्पिटिशन की बात करूँ ना, तो बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट है। विनर को मिलेगा 2.22 मिलियन, यानी कि रफली अगर मैं बात करूँ तो 13-14 लाख ओनली। तो बहुत ही कमाल का कॉम्पिटिशन, और अगर इंडिया में इस तरह का कॉम्पिटिशन कराया जाए ना, आई एम डैम श्योर इतने सारे विनर्स मिल जाएंगे। एक विनर तो हमारी आरजे पलक ही होने वाली है, बिकॉज आरजे पलक को इतनी ज्यादा नींद आती है, वो एक ऐसी लौती इंसान है जिसके ऊपर शायद कॉफी भी काम नहीं करती। तो आज ही मैं कॉम्पिटिशन पलक को बताने वाली हूँ, और बस मैं तो यही विश करूँ कि इंडिया में भी ना इस तरह की कॉम्पिटिशन होने चाहिए, पता तो चले कि कौन कितना सो सकता है। और इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है थोड़ी देर में।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर कॉलिंग।

कौन बनेगा करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया, और ये स्कैम आया है कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम के ट्रैप में फंस गया। और हुआ क्या, सबसे पहले ने स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। किसी भी लॉटरी किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना, उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.government.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी देर में।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

हम ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसी को खुश करने के लिए ना उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी ना काइंडनेस के लिए बड़े जेस्चर नहीं, बस एक छोटा सा दिल चाहिए होता है। और आज मैं लेकर आ गई हूँ फील गुड स्टोरी चोरी, और ये गुड स्टोरी ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक छोटी बच्ची का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये जो छोटी सी बच्ची है अपनी सोसाइटी की बैल्कनी से हाइट पर काम करने वाले एक पेंटर को ना जाकर पानी और कुछ मिठाइयां देती है। अब तो सबसे प्यारी चीज क्या थी, ये करने के लिए ना इसे किसी ने फोर्स नहीं किया, ये जेस्चर इस बच्ची के खुद का था। उसने बालकनी के बाहर एक पेंटर को काम करते हुए देखा, दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई, पानी का ग्लास लेकर मिठाई लेकर आई और जाकर ना उस पेंटर को दे दिया। वो ये स्टोरी ना हमारे लिए एक रिमाइंडर लेकर आई है, काइंडनेस की कोई मिनिमम एज नहीं होती और ना ही कोई मिनिमम अमाउंट होता है, बस दिल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पाते, बड़े बड़े तोहफे उन्हें नहीं दे पाते, उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन एक छोटा सा टेक्स्ट भी इनफ होता है किसी को स्पेशल फील कराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हाँ जिंदगी में काइंडनेस तो बाकी है। तो बस यार प्यार के साथ जियो और दूसरे को जीने दो, और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी यार, कई बार ना हमें ऐसे लगता है कि अगर कुछ भी जरूरत है ना हमें जिंदगी में, तो वो सिर्फ गूगल ही पूरा कर सकता है। जैसे कोई नंबर चाहिए तो गूगल के पास चले जाओ, कोई रास्ता कोई डायरेक्शन चाहिए तो गूगल के पास चले जाओ, कोई मार्केट की कोई शॉप ढूंढनी है तो गूगल के पास चले जाओ। लेकिन कभी आपने सोचा ये गूगल भी किसी के पास तो जाता ही होगा ना? तो यार देखिए, ये गूगल आपको ले जा सकता है स्कैमर्स के पास। और यही हुआ है गूगल पर। अगर कभी भी आप किसी भी बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च कर रहे हैं ना, तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जेन्युइन है या फिर नहीं, क्योंकि ना अब एक और स्कैम आ गया है मार्केट में। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये स्कैम बता देती हूँ। तो देखिए, आज का स्कैम हुआ है वडोदरा से। 63 ईयर्स ओल्ड फाइनेंसर के साथ एक स्कैम हो गया है। फेक बैंक के एम्प्लॉय ने उन्हें व्हाट्सएप पर एपीके ऐप डाउनलोड करवाया और उसके बाद ना उनके अकाउंट से लगभग 20 लाख रुपए ठग लिए गए। मतलब सिंपल सा है, उन्हें पहले एक कॉल आया, एक ऐप डाउनलोड कराया और उनका अकाउंट खाली। ये कॉल इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर का नंबर जो है गूगल पर सर्च किया था। तो बस आज यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपको जरूरत है आपके बैंक के कस्टमर केयर नंबर की, तो जाकर बैंक से ही कॉन्टेक्ट करें। उसके लिए किसी भी गूगल पर रेंडमली किसी भी नंबर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये सारा खेल हो सकता है स्कैमर का। और अगर आपको आपके अकाउंट को सेव करना है ना, तो ये छोटी सी चीज है जिसका आपको ख्याल रखना होगा। और इसी के साथ ही स्टे सेफ स्टे अलर्ट मिलता है ना कुछ ही देर में।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद के इंचो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्ले सेल प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, टाइकवांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हाँ जी, डू यू नो से चलिए बात कर लेते हैं डिड यू नो पर। यार ये उवासियों की अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान लेता है उसे देख कर ना सामने वाले इंसान की भी उवासी निकल जाती है, यानी कि योनिंग अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो। बोला था ना, अगर बात भी कर लो ना तो आ जाती है यार। तो देखिए भाई, नींद मैं पूरी करके आई हूँ फिर भी उवासी आ गई मुझे। सो आज मैं डिड यू नो लेकर आई हूँ। अभी जब मैंने उवासी ली तो आपको भी उवासी आई गई होगी ना भाई, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कहते हैं जब आप किसी को यौन करते हुए देखते हैं, इवन जो हवा वाली आवाज है ना, अगर आप वो भी सुन लेते हैं ना, तो उससे बिना आपको यौन आ जाती है, पढ़कर भी उवासी आ जाती है भाई। क्योंकि ना इसका कनेक्शन पता है किसी चीज से है, इस यौनिंग को कहते हैं कंटीजियस यौनिंग। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि यार ऐसे क्यों होता है, तो बता देना कि भाई ऐसे इसलिए होता है। तो देखिए सामने वाला इंसान आपको कितना इंटेलिजेंट समझने वाला है ना। एंड आई एम डैम श्योर जब मैंने यौन की थी ना, आपने भी यौन जरूर की होगी। तो देखिए आज के डिड यू नो में यही था कि इस चीज को कहते क्या है, और कल नहीं, अभी थोड़ी देर में फिर से मिलेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड।

हेलो हेलो जी। तो चलिए भाई, वक्त हो गया है सोशल स्यापा को। और आज का सोशल स्यापा ना वाकई स्यापा लेकर आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता था, ये जो आंटियां मोहल्ले में चुगली करती है, ये टैलेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ अपना टाइम पास करती है? यही गलतफहमी ना आज मैं दूर करने आई हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया में एक आंटी ने इसी को बिजनेस बना दिया है। तो देखा, अब हुआ ना अफसोस, जिन आंटियों को ना हम इतना कोसा कर देते कि आंटी आपके पास कोई काम नहीं है, देखिए भाई उन्होंने अपने इसी काम को ना एक्चुअल में काम बना लिया और अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो देखिए, 67 इयर्स ओल्ड मिरियम नाम की इस विमेन ने ना अपने नेबरहुड के सारे सीक्रेट्स गॉसिप कलेक्ट करके ना लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि इसी काम से उन्होंने अब तक 2 घर खरीद लिए हैं। और वो पता है खुद को ना बहुत ही प्राउड के साथ बताती है कि मैं प्रोफेशनल चुगलीखोर हूं, यानी कि मैं ना गॉसिप कर सकती हूं और मुझ जैसे गॉसिप ना शायद ही मोहल्ले में कोई दे सकता है। अब भाई आप जरूर सोचेगा कि हमारे यहाँ जिन आंटियों को हम बोलते हैं ना कि आंटी यार अपना काम करो, क्यों किसी की जिंदगी में ताक झांक कर रहे हो। अब आप उन्हें जाके बताइए कि आंटी आपकी इस टैलेंट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और यार अगर आपको कोई मौका मिले ना तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी चुगली करके ना अच्छा खासा पैसा कमाइए। क्यों 9 to 5 करना है आपको, इतनी जदोजहद करनी है लाइफ में, इस तरह की चुगली कीजिए, गॉसिप कीजिए, पैसा कमाइए और हाँ अपनी लाइफ को ना और अपनी लाइफ में मजे कीजिए। लेकिन ये तो था देखिए भाई मजाक के लिए, लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहानी हमें क्या लेसन देती है। तो भाई देखिए, आज की स्टोरी हमें ये लेसन देती है, गॉसिप से पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है ना किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी ये जो कहानी है ना वो कब जाकर कहां पर ब्रॉडकास्ट हो रही हो। और इसी के साथ ही आज का सोशल स्यापा, और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नए मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है लेकिन हमारा दिल फिर भी वही तीन शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

0: हाँ जी, बातें बहुत सारी कर ली आज, तो चलिए अंजलि ऑन एयर का ये सफर ना यहीं पे खत्म कर देते हैं, आज के लिए खत्म करते हैं, बिकॉज वीकेंड में आ गया है ना। अब मैं आपसे मिलूंगी मंडे सेम टाइम सेम प्लेस, बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आपके साथ। सुबह सुबह ट्रैफिक से लेकर वेदर सबकी अपडेट आपको देती हूँ, और आज भी दी थी बॉलीवुड से लेकर फरीदाबाद की अपडेट्स आप तक पहुँचाती हूँ। तो भाई फ्राइडे को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, वीकेंड में आ गए हैं, अपने फैमिली के साथ अपने लव वंस के साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। और देखिए जब वीकेंड आता है ना तो ना सारी टेंशन साइड हो जाती है, फिर संडे तक ना बस फ्री होकर हम लोग रिलैक्स होकर हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये दो दिन ना जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, बस यही वाले स्पिरिट अपने साथ रखिएगा, इस वीकेंड को अच्छे से डेडिकेट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा खूब। मिलेंगे मंडे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे कोई मैसेज आज देके जाएगी। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और आज का जो कोट है ना, वो कुछ ऐसा है, स्ट्रॉन्ग वुमेन नोज शी हैव स्ट्रेंथ इनफ फॉर द जर्नी, बट द वुमेन हु हैव स्ट्रेंथ नोज इट इज द जर्नी वेयर शी विल बी स्ट्रॉन्ग। मतलब ये दोनों बातें सिमिलर ही हैं, बट कहने का तरीका कुछ ऐसा है कि सामने वाले को अब कौन सा तरीके पे आके वो क्लिक कर जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक वुमेन को ये तो पता है कि वो बहुत इनफ स्ट्रांग है ये जर्नी तय करने के लिए, बट जब वो वुमेन स्ट्रेंथ वाइज उतनी स्ट्रांग है तो उससे मालूम है ये जर्नी उसके लिए कितनी आसान है। तो ये जो एक भाव है ना इस चीज को सामने लाने का कि एक नारी जो है वो अपने आप में बहुत सशक्त है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बट वो पता नहीं क्यों अपने आप को हर बार डिग्रेड करती हैं या अपने आप को कमजोर समझती है। आप कांधे से कांधा मिला के चलने वाली इस विश्व की वो महिलाएं हैं जो शायद एक टाइम पे पुरुष को भी पीछे छोड़ दे उनकी क्रिएटिविटी में, उनके स्किल्स में और लाइफ ग्रोथ में और बहुत सारी चीजों में। तो आपको अपने आप को कभी भी ऐसे एक लेवल नीचे नहीं देखना चाहिए, हमेशा खुद को ऊपर देखो ताकि सामने वाला जब आपसे बात करे ना तो उसे भी नजरें उठा के बात करनी पड़े। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्ले सेल प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

वुमेन इन स्पॉटलाइट में आज एक ऐसी वुमेन है जिसके बारे में मैं क्या बात करूं। मेरे को लग रहा है ये एक साथ दोनों स्पॉटलाइट में आएंगी कि जिन्होंने ये लिंक्डइन पे उनको पोस्ट किया है वो स्पॉटलाइट पे आएंगी कि जिनके लिंक्डइन पे ये पोस्ट हुआ है वो स्पॉटलाइट पे आएंगी। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और इतना कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक मदर का जो प्यार है ना वो इस पोस्ट में बखूबी दिखाई दे रहा है, बट जिसके पास ये पहुंची उन्होंने लिंक्डइन पर डाल के बोला मैं इसका क्या जवाब दूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। दरअसल एक मोहतरमा है, उनके लिंक्डइन पे एक मदर ने आके ये पोस्ट किया है कि मतलब शेयर किया है कि मेरा एक बेटा है जिसने बायोलॉजी में बहुत अच्छा किया हुआ है, बायोटेक में बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, 1997 में वो बॉर्न हुआ है और मैं उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। और ये आके उन्होंने उस लड़की के प्रोफाइल पे मैसेज किया, वो लड़की कंफ्यूज है। ये अभी तक शादी.com चल रहा था, प्रपोजल घर वाले लाते थे, ये पहली बार हो रहा है मेरे लिंक्डइन पे मेरे लिए आ रहा है कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे अगर तुम शादी करना चाह रही हो। अब लिंक्डइन को आप इस चीज का जरिया ना बनाइए ना कि वहां आप शादी.com या matrimonial.com खोल के बैठ जाएं कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता है। अगर आप हाँ बोले 1997 में हुआ है, इस साल वो लगभग 29 ईयर्स का हो जाएगा, आगे आप बताइए। इतना कैलकुलेशन मेरे माइंड में इसलिए क्योंकि मेरा सेम ईयर है और मेरी मम्मी इतना तो नहीं करेगी, बट हाँ आते जाते वो भी मेरे को ऐसा बोल देती है, अरे शादी। ये क्या तरीका था मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वो उसकी बिजनेस प्रोफाइल बना रही है वहां पर, वो अपनी कि मैं अपने करियर में अगला ये करूंगी, ये प्रोफाइल मैं शेयर करूँ करियर को, बीच में टंग से मैसेज बजता है लिंक्डइन पे क्या, अरे मेरे बेटे शादी करोगी। अरे भाई साहब ऐसी चीजें स्पॉटलाइट में आती ना तो देख के अच्छा लगता है। वो माँ की एक तो ममता कितनी मासूम है, उन्हें यह नहीं पता है कहाँ पूछना होता है कहाँ नहीं पूछना होता है। अच्छा हुआ आपको एक फॉर्मल मेल करके नहीं भेजा गया है यहाँ पर। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: ये लाइन आपने सुनी है,
1: छोटा बच्चा जान के मुझको आंख ना दिखाना रे, डुब डुब डब डब। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये बात हमारी जो आज की शी हैव चेंज द वर्ल्ड में छोटी सी नन्नी सी बिटिया है, उसने करके दिखा दी है। शी हैव चेंज द वर्ल्ड तो नहीं बोलूंगा, शी इज स्टिल चेंजिंग द मेंटालिटी एंड वर्ल्ड, क्योंकि ये मात्र 4 साल की हैं और एक ऐसी मराठी फिल्म इन्होंने करी है जिसका नाम है नाल 2। और उसमें इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि इनको सबसे छोटे यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट इतनी कम उम्र में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। त्रिशा नाम है इनका, और त्रिशा को ये अवार्ड की जो उपलब्धि है ना, ये उसकी कला के लिए मिली है। और कला जो है ना, वो मेरे को लगता है बाकी सारी चीजों से हमेशा अव्वल होती है, मतलब ऊपर होती है, और एज मैटर नहीं करता है। यहाँ पर उनकी मासूमियत ने, उनके कॉन्फिडेंस ने, उनकी प्रेजेंस ने स्क्रीन पे सबका दिल ऐसे छू लिया कि उन्हें उनको ये अवार्ड मिलना ही मिलना था, ये उनसे दूर जा ही नहीं सकता था। और उनके जो पूरे और इस वक्त जो पूरे देशवासी हैं, ये गर्व फील कर रहे होंगे, 4 साल की छोटी वो लड़की, उसने ऐसा कुछ करके दिखा दिया है जो शायद इंडिया में किसी ने इमेजिन नहीं करा होगा। इतना बड़ा अवार्ड इतनी कम उम्र में तो नहीं करा होगा। और एज अ आरजे, एज अ रेडियो प्रेजेंटर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी कहानियां मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएं, उन्हें भी ये किस्से ये कहानियां बता पाएं, और उन्हें भी बोले नहीं, तुम्हें भी इसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, बस उसे करने की लगन छोटी या बड़ी होती है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

हाँ जी, तो महिलाओं के थोड़े से हक की बात और कर ले, और महिला को थोड़ा सा और उनके ही राइट्स के बारे में नॉलेज दे ले। 89.6 रेडियो महारानी और तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और आज जो मैं राइट की बात करने जा रहा हूँ, हर महिला को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है। राइट टू पे इक्वल। अब यहाँ पर आप जब डेट पे जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वहां पर आपको इक्वल पे करना, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राइट टू पे इक्वल से होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जितनी सैलरी आपके उस लेवल पे एक मेल एम्प्लॉय को मिल रही है, उतनी ही आपको भी मिलनी चाहिए। पे इक्वल यहां से हम रिलेट कर रहे हैं। जितना काम आप कर रहे हो, अगर सेम एक कोई मेल कर रहा है, जितनी जिम्मेदारी आपके पास है उतनी ही एक मेल एम्प्लॉय के पास है, और जिस लेवल पे आप हो और उसी लेवल पे वो मेल एम्प्लॉय है, मतलब सब इक्वल होगा तो सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं, अब ये हो सकता है कि वो बहुत साल पुराना हो किसी कंपनी में और आप अभी आए हो, तो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचो और आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी चीजों आपको मैच करनी है। ये नहीं कि आप भी डायरेक्टर पोस्ट पे गए, वो भी डायरेक्टर पोस्ट पे है, तो आप कहो नहीं मुझे इक्वल सैलरी चाहिए। एक्सपीरियंस वहां पर मैटर करता है, बट आप भी उतने ही एक्सपीरियंस हो, 6 साल, वो भी 6 साल एक्सपीरियंस और सेम पोस्ट पे हो, देन यू कैन फाइट फॉर योर राइट कि मुझे भी इतना पे मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा अधिकार है, और अपने अधिकार के लिए बोलना कभी भी गलत नहीं होता है। तो राइट टू पे इक्वल का सिंपल ये मतलब है। और बाकी अगर आप अच्छा कमा रही हैं तो डेट पे जाइए, तो वहां भी पे इक्वल कर लिया करिए, थोड़ा मेन का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। बी अ स्मार्ट वुमेन वाला एक कदम उठा लीजिएगा। और 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिएगा।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
1: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु। 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15 अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद 11 AM to 8 PM।
2: द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।
1: तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

एक आदमी को ना बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें वो छोटी छोटी चीजें चाहिए और वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाने वाले हैं। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अब आप बोलोगे ना वो छोटी छोटी चीजें क्या है। देखिए वो छोटी छोटी चीजें ये हैं कि जैसे किसी इंसान को घड़ी पसंद है तो नॉट बहुत महंगी, बट आप उसे कोई नॉर्मल घड़ी भी ला के दे दोगे ना जब उसका कोई स्पेशल डे आ रहा हो तो वो बहुत खुश हो जाएगा आपसे, तो ये एक छोटी वाली खुशी। कई लोग मेंस होते हैं जिन्हें डीओ बहुत पसंद होता है, डीओ का अच्छा कलेक्शन करते हैं, तो आप वो एक छोटी डीओ की बॉटल भी उनको लाके दे देंगे, नॉट सो एक्सपेंसिव, मैं एक्सपेंसिव डीओस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। शूज का कलेक्शन, ऐसे मेंस की बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, बहुत सारे मेंस होते हैं जिन्हें अपने जूतों से बहुत प्यार होता है, तो उनकी जूते जो होते हैं ना उनसे अपना आप डिस्टेंस बना के रखिए, ये नहीं कि जूते इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, भाई ये छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत हर्ट कई बार कर जाती हैं। तो अगर आपको पता है आपके मेन को क्या पसंद है, तो पहले तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए एक मेन के बारे में, तो जो उसे पसंद है उसकी उस चीज का अगर आप टेक केयर कर लोगे ना तो मेन से बढ़िया इंसान आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी उस चीज की केयर कर लो जो उसे सबसे पसंद है, बस दैट्स इट। अगर उसे खाना पसंद है तो उसे अच्छा खिला दो तो वो सबसे खुश रहने वाला। तो आपको अब फिगर आउट करना है आपका जो मेन है उसकी सबसे फेवरेट चीज क्या है, और उसके लिए वही हर थोड़े थोड़े टाइम बात करते रहो तो आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपकी लव लाइफ है वो बेटर चलती रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियंट इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 91.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आज की जो नारी हैं ये भी मल्टीटास्कर हैं और बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: हाय तुषार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
0: बिल्कुल, और ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आप बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, मैं उसके बारे में और वहां से ही जर्नी को स्टार्ट करना चाहूंगा। एक लॉकडाउन से पहले, एक लॉकडाउन से बाद, ये दो फेसेस वाली जो स्टोरी है। सबसे पहले तो पहले वाले चलते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री से आप एसोसिएटेड हैं, लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवल गाइड करना प्लस उनकी जर्नी प्लान करके देना, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि ऐसा कुछ करते हैं?
1: देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री से ही मैंने अपना करियर शुरू किया। जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री ही थी। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद ऑब्वियसली मेरे लिए एक शॉक था, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन पे ही अफेक्ट आया था। बंद हो गई थी सारी कंपनीज, बंद हो गई, मेरे लिए भी एक बहुत शॉकिंग सिचुएशन थी कि ये क्या हो गया है। बट मैं बहुत नेगेटिव नहीं हुई, मैंने कुछ चीजें पॉजिटिव वे में भी किया। मैं फिटनेस से बहुत, मेरा पैशन है फिटनेस, तो मैंने और मेरे अंदर एक ये चीज है कि जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ ना, तो मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं एरोबिक्स करती हूँ, और इससे मेरा ना स्ट्रेस कम हो जाता है। जब मैं अब जॉब तो थी नहीं, वर्कआउट मैं कर रही थी, तो मेरे माइंड में कुछ चीजें आई कि व्हाई नॉट फिटनेस, आई कैन गो विथ फिटनेस ऑल्सो। तो फिटनेस में मैंने सर्टिफिकेशन किया, मैंने CPT ट्रेनिंग ली जिसमें सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद मैंने एरोबिक्स ज्वाइन करा, एरोबिक्स की सर्टिफिकेशन की। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी सिचुएशन जब नॉर्मल होने लगी तो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट किया, एंड देन जिम में जाके बात की लोगों से,

0: मैंने अपनी जो पैशन था वो मैंने अपना स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और अपनी जर्नी यहीं से शुरू कर दी फिटनेस को लेके।
1: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 101.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये दो अलग, एक ट्रैवल इज समथिंग डिफरेंट और फिटनेस इज डिफरेंट, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं शायद हम वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। तो मैं ये जान रहा हूँ ये दोनों चीजों का बैलेंस आप कैसे करके चल रहे हो कि वो भी मैनेज करना और प्लस फिटनेस भी मैनेज करना।
1: देखिए इसमें मैनेज नहीं होता है, इसमें ये होता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चल रहे हैं। कई बार होता है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप अपने आप को भूल जाते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने अपने बारे में आपको सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। कि ऑटोमेटिकली ये होता है कि अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, आप खुद खुश रहेंगे, तभी आप अपने घर वालों को खुश रख सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत सोचना।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके। Would you make a smash? Would you make a smash? Would you make a smash?

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: लगा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे, नजर
1: झुका के करे। तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए।

0: मेरे लिए लिखते गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में, आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर है। मैंने थोड़ा सा जब आपके बारे में रिसर्च करा या आपके बारे में पढ़ा, आप बीइंग अ मदर, आप मदर हैं और उसके बाद आप ट्रैवल इंडस्ट्री प्लस फिटनेस, तो कितना ये मुश्किल हो जाता है कि फैमिली के साथ ये दोनों चीजें भी बैलेंस करनी है। ये आपका स्टार्टअप है, इसे भी टाइम देना है, प्लस फैमिली या जो चाइल्ड है उन्हें भी उतना टाइम देना है।
2: देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था, जब सिचुएशन नॉर्मल हुई मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर मैं अपना फिटनेस में शुरू कर दूंगी तो मैं वापस ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। हाँ। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में जाऊंगी ये मैंने सोचा था क्योंकि वो मेरा करियर
1: था
2: एंड मैंने स्टार्टिंग भी वहीं से की थी। अपॉर्चुनिटीज आने लगी तो मैंने वापस से ट्राई करना शुरू कर दिया ट्रैवल इंडस्ट्री में। मैंने कंपनी ज्वाइन की बाय द नेम ऑफ TNA, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हम इसमें कस्टमाइज करते हैं पैकेजेस एंड हम ग्रुप ट्रैवल्स भी कराते हैं। इधर मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लेके गई, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था। और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फैमिली, और मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि अपनी फैमिली को आप देखो लेकिन अपने पैशन को भी फॉलो करो, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी।
1: 100% मैं यहीं पर, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल उसमें, तो आपने एक्सप्लोर किया होगा, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आप अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं या लिस्ट में है कि यहाँ एक बार और एक्सप्लोर करने जाना है?
2: मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा तो नहीं करती क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑपरेशंस देखती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कंपनी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में भेजती है, इवेंट्स मैनेज करने के लिए भेजती है। बट हाँ, मैं अभी एक ग्रुप लेके गई थी केरला फॉर 100 people, और अपना जो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं यहाँ बताने गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाँ, मेरे को अगर ट्रैवल करना है तो मुझे यूरोप ट्रैवल करना है एंड आई वांट टू ट्रैवल पेरिस एंड आई वांट टू ट्रैवल जापान आल्सो, बिकॉज मेरी बड़ी डॉटर जो है शी इज फॉन्ड ऑफ जापान एंड कोरिया।
1: Okay.
2: तो हाँ, obviously यहाँ जाना चाहूंगी मैं।
1: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 99.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम, आज की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए अपने पैशन को फॉलो करना, एक प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग कहीं बार हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ से अगर कोई गाइडेंस आज उन्हें देना चाहें।
1: देखिए, मैं मानती हूँ बहुत चैलेंजिंग होता है, आई नो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी में रखना सेल्फिश नहीं होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आप अपनी लाइफ को जैसे बैलेंस कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप बच्चे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए सब, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, अपने पैशन को जरूर फॉलो करो, वो बहुत ज़रूरी है। अपने पैशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना, आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। तो जैसे मैंने लॉकडाउन में किया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया उस चेंज को, मैंने पॉजिटिवली उसको फॉलो अप किया और मैंने अपना फिटनेस में भी करियर बनाया।
0: अभी फिटनेस का हम लोग जो चला रहे हैं वो कैसे सेशंस लेते हैं या कैसे हम अपना डे आउट प्लान करते हैं?
1: देखिए, मैं एरोबिक्स क्लासेस लेती हूँ, आई टेक क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो, आई टेक क्लासेस इन जिम ऑल्सो। हाँ, मेरी पूरा वर्किंग रहता है, लेकिन आई टेक इन मॉर्निंग बैचेस लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो
0: कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? ऑनलाइन क्लासेस पे वैसे
1: मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, फिटनेस विद आयुषी, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 106 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमारे शो का नेम है नारी नंबर वन, नारी हर आगाज में आ गया। जैसे आप भी 100 लोगों का एक क्रू लेके जाना, प्लस लॉकडाउन के टाइम एक नई चीज को एक्सप्लोर करना कि मैं इसमें भी एक्सीड कर सकती हूँ, ट्रैवल बिजनेस, क्योंकि हमें मालूम है उस टाइम ट्रैवलिंग पूरी तरह से ही बंद था कि हमें कहीं नहीं जाना है, तो उस टाइम के वो चैलेंजेस और सारी चीजों को लेके। तो ऐसे बहुत सारी और नारी हैं जो बहुत अलग अलग फील्ड्स में या अलग अलग तरीके से चैलेंज करती हैं। तो जब वो चैलेंज उनके सामने आ रहा है तो उस टाइम उन्हें अपने माइंडसेट को या क्या एक ऐसी पॉजिटिव डोज खुद को देना चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगी तो ये होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव जो आपके लिए मंत्रा रहा हो।
1: देखिए, लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक लेडी के लिए, घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना, जॉब करना, घर के काम होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। उसको पॉसिबल बनाना ना सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल तो आता है और बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन आप वो चैलेंज को फेस करो, आप करो, आप मेहनत करो, थोड़ी सी जर्नी आपकी ज़रूर स्लो होगी लेकिन आपको कोई रोक नहीं।

तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर with Bollywood never stops,
5: with Bollywood never stops,
6: picture perfect music loaded।

करूंगा तो पता लगूंगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो मेरे दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो पता लगूंगा दिल नाले

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल है भाई आप सबके। सुबह से अपनी अपनी रेस में लगे हुए होंगे ना, किसी का काम पेंडिंग है, किसी की मीटिंग्स चल रही हैं और किसी का दिमाग बस ये कैलकुलेट कर रहा है कि भाई आज घर जाने में कितने घंटे बाकी रह गए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है ना, लंच हो ही गया है, आफ्टरनून चल रहा है, तो बस इसी बीच थोड़ी देर के लिए अपना मूड हल्का करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ी फिल्मी बातें करते हैं और एंटरटेनमेंट का डोज लेते हैं। मैं हूं पलक और अगले दो घंटे आपके साथ होंगे बिल्कुल फिल्मी फ्लेवर वाले ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: Get ready, Faridabad. Because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
2: Clorox Entertainment present Clorox Garba Night. 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से
1: वेन्यू पार्टनर इमेंस रेजिडेंसी होटल सेक्टर 28 फरीदाबाद रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6 एफएम
2: सपोर्टिंग पार्टनर्स आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद स्टूडियो वन डांस एंड फिटनेस
1: राइट पार्टनर वोक वुमेन ऑक्यूपाइड कार्स स्पोर्ट पार्टनर नॉट आउट हेल्थ पार्टनर अजयवेदा सिक्योरिटी पार्टनर बिग पैंथर
2: डीजे ढोल डांडिया नॉनस्टॉप गरबा सो गेदर योर फ्रेंड्स फैमिली एंड योर गरबा गैंग
1: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है फुल ऑन गरबा नाइट
3: झमाझम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा
2: टिकट्स अवेलेबल हैं ऑल इवेंट्स की साइट पे या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9311304040 पर
1: ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026 इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग डीजे की बीट और ढोल का धमाल सब एक साथ

0: अक्षय कुमार को एक्शन करते तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन जब खिलाड़ी भैया कॉमेडी मोड में आते हैं ना तो सीन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अब उनकी नेक्स्ट कॉमेडी को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहा है। खबर है कि अक्षय कुमार एक बार फिर साजिद के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, और इन दोनों ने 2012 में हाउसफुल 2 में साथ काम किया था, और अब लगभग 14 साल बाद ये जोड़ी वापस कॉमेडी के लिए साथ आ रही है। लेकिन इस बार अक्षय के साथ एक और इंटरेस्टिंग नाम है, आर माधवन जी का। केसरी चैप्टर 2 में दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, और अब कॉमेडी में साथ नजर आएंगे। फिल्म में श्रिया सरन और दीसा पटनी भी रिपोर्टेडली कास्ट का पार्ट है, और ये स्टोरी मिडल एज मैन के अराउंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड एक कॉमेडी होगी। और इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है, और शूटिंग लंदन में ईयर एंड या 2027 की बिगनिंग में स्टार्ट हो सकती है। तो अक्षय और माधवन को इस बार सीरियस नहीं बल्कि फुल कॉमेडी मोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।
1: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ, और मैं निकल जाती हूँ।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: मेरा मुन्नी चाचा मेरा जो

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा कभी कभी ना प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन इतनी थिन होती है कि पता ही नहीं चलता कि सामने वाला प्यार कर रहा है या बस पॉसेसिव होता जा रहा है। और इसी कंफ्यूजन को लेकर आ रही है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर तू है मेरी किरण, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर में सोनाक्षी है किरण और जहीर है समर, और समर को लगता है कि किरण के साथ उसका एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन किरण क्लियरली उसे डिस्टेंस चाहती है, इतना कि फोन ना करने तक को कहती है। लेकिन समर पीछे हटने वाला नहीं है भाई, और यहीं से स्टोरी थोड़ी अनसेटलिंग होने लगती है। कभी जो हो रहा होता है वो रियल लगता है, कभी लगता है कि शायद किरण की रियलिटी ही उसे कंफ्यूज कर रही है। और जैसे जैसे समर का बिहेवियर पॉसेसिव होता जाता है, सस्पेंस भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। मतलब ट्रेलर देख के एक सवाल तो दिमाग में रह ही जाएगा कि जो हम देख रहे हैं ना, क्या वो सच में हो रहा है। और ये फिल्म आपको 23rd of October 2026 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि ये फिल्म कितनी मिस्टीरियस होने वाली है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर्स।

किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ। मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं घर लौटू ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट को भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा। मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अगर आपको रियलिटी शोज में सिर्फ फाइट्स और ड्रामा नहीं बल्कि थोड़ी स्ट्रेटजी, थोड़ा दिमाग और कौन किसके साथ है वाला गेम भी पसंद है ना, तो ये अपडेट बिल्कुल आपके लिए है। प्राइम वीडियो ने अनाउंस कर दिया है अलायंस सीजन 2। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके लिए आपको पूरा एक साल बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। सीजन 2 14 जनवरी 2027 से स्ट्रीम होगा और कुणाल केमू एक बार फिर होस्ट के तौर पर वापस आ रहे हैं। और पहले सीजन में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस के साथ साथ अलायंसेस, चेंजिंग लॉयल्टीज और स्ट्रेटजी के थ्रू गेम में टिकना था। और इस बार मेकर्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाईर स्टेक्स, शार्पर गेम प्ले और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट होने वाले हैं। कंटेस्टेंट्स कौन होंगे ये भी रिवील अभी नहीं हुआ है। तो फिलहाल एक ही सवाल है कि इस बार अलायंस बनेगा या गेम के साथ दोस्ती भी बदल जाएगी। और ये चीज तो 14th of January को ही पता चलेगी। लेकिन अभी वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

हॉरर कॉमेडी और मिस्ट्री से ब्रेक लेते हैं और चलते हैं सीधा 90s के बॉलीवुड में। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि जिनके लिरिक्स का मतलब समझने से ज्यादा जरूरी होता है कि बस बीट सुनते ही पैर अपने आप हिलने लगे। और ऐसा ही एक आइकॉनिक नंबर है तम्मा तम्मा लोगे, जो 1990 में रिलीज हुई फिल्म थानेदार का सुपरहिट सॉन्ग था और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया ये गाना बप्पी लहरी और अनुराधा पोडवाल ने गाया था। और इस गाने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि संजय दत्त को डांस में अपने स्टेप्स माधुरी दीक्षित के साथ मैच करने के लिए रिपोर्टेडली 16 दिन तक रिहर्सल करनी पड़ी थी। कोरियोग्राफी सरोज जी ने की थी और कहा जाता है कि दोनों की टाइमिंग परफेक्ट करने के लिए इस गाने को 48 टेक्स में शूट किया गया। अब गाने की बात मैंने कर ही दी है तो सुनाती हूँ आपको एक गाना, एंजॉय कीजिए ये गाना। इन स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: गुरुग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंस डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।
2: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
3: कपड़े?
2: हाँ।
3: ज्वेलरी?
2: बिल्कुल।
3: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
2: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु। 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15 अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद 11 AM to 8 PM।
3: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

रेडियो महारानी।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब बात एक ऐसी फिल्म की जिसका पोस्टर देखकर ही लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब्बास मस्तान की न्यू थ्रिलर थ्री मंकीज अनाउंस हो गई है और नाम सुनते ही याद आते हैं वो थ्री वाइज मंकीज, जिनका कहना है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन फिल्म में इनका मंत्र थोड़ा अपडेट हो गया है। अब इनका कहना है कि सब देखो, अपनी सुनो, बेखौफ बोलो। फिल्म में विशाल जेठवा, मुस्तफा और तेंजिन नजर आएंगे अमर अकबर और एंथोनी के रोल्स में। मोशन पोस्टर में तीनों मास्क्ड लुक में किसी डेंजरस काम की तरफ जाते दिख रहे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बिल्कुल केयर फ्री दिख रहा है। और अब्बास मस्तान की फिल्म है तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन पर दिख रहा है जरूरी नहीं वही पूरी कहानी हो। अर्जुन रामपाल भी फिल्म का पार्ट है और उनका करेक्टर संजय है। और स्टोरी को भी अभी सीक्रेट रखा गया है, बस इतना कंफर्म है कि ये थ्रिलर 4 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में आएगी। तो अमर अकबर और एंथोनी इस बार कॉमेडी नहीं बल्कि कुछ बड़ा खेल खेलने आ रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

दूसरों को आदत उसका चीज अमीन की, अक्सर पांव फिसलते उनके उस चिकनी फर्श पे, इन दीवारों से घबराता ये दिल मेरा नादान, इस बेचैनी को केवल ये बेबस खिड़की समझे, देखा शहर पूरा छान, कमी रंगों की मिली, कमी समय की कमी उन ठहरे लम्हों की मिली, सबको मंजिल की तलाश, कमी रस्तों की मिली, इतनी लाशों की ये भीड़, कमी कब

0: खेत की मेंढ छोड़ गए तेरे पाम भाग गए, पर बटिया पे निशान आज भी है। सूट पैंट गेर लिए दही पे मानस, पर तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है। तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है, और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलोसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में, और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
1: डॉक्टर

0: Sharenaxis.
1: Hey guys, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੌਂਗ? ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ MP3 ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।
2: 89.6 ਰੇਡੀਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ।
3: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

और अब बॉलीवुड से थोड़ा साउथ साइड चलते हैं, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं। बात हो रही है जूनियर एनटीआर और केजीएफ फेम प्रशांत नील की मच अवेटेड फिल्म ड्रैगन की। कुछ टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि जूनियर एनटीआर की इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट डिले हो सकती है, क्योंकि जूनियर एनटीआर के हाथ में इंजरी के बाद सर्जरी हुई थी और उन्हें कुछ हफ्तों के रेस्ट की एडवाइस दी गई थी। लेकिन अब मेकर्स ने इन रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। प्रोड्यूसर रवि शंकर यलमंचली ने कंफर्म कर दिया है कि ड्रैगन अपनी अनाउंस्ड रिलीज डेट पर ही थिएटर्स में आएगी, जो कि है 11 जून 2027। और इंटरेस्टिंगली एनटीआर के रिकवर होने के दौरान प्रशांत नील फिल्म के वो पोर्शन शूट कर रहे हैं जहां जूनियर एनटीआर की नीड नहीं है, मतलब हीरो रेस्ट पर है लेकिन डायरेक्टर का कैमरा रुकने वाला नहीं है भाई। फिल्म में एनटीआर की अपोजिट रुक्मणी वसंत नजर आएंगी और अनिल कपूर भी नार्कोटिक्स ब्यूरो चीफ के इम्पोर्टेंट रोल में है। तो फिलहाल ड्रैगन की रिलीज डेट लॉक्ड है और प्रशांत नील के डायरेक्शन में जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर और एक मैसिव एक्शन वर्ल्ड, ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए 11 जून 2027 कैलेंडर में मार्क करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर
1: जी, इसी के साथ वक्त हो चुका है आज के फिल्मी फ्लेवर को शटर डाउन करने का। आज कभी पुराने गाने याद किए, कभी न्यू फिल्म्स की बातें हुई और बीच बीच में थोड़ी गॉसिप भी हो गई। और इसी के साथ अब मुझे लेनी पड़ेगी आप सभी से इजाजत। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे फिल्मी फ्लेवर सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: आप लोग एक बात तो आज कह सकते हो कि फरीदाबाद आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई लोग गायब हो गए हैं इस दुनिया से, है ना?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? आज की छुट्टी और छुट्टी पे लोग निकल गए हैं, मैं बोलूँगा ये लग्जूरियस वीकेंड, लग्जूरियस नहीं एक्सटेंडेड वीकेंड, और इसके अलावा और भी कुछ शब्द हों तो वो वाला वीकेंड, क्योंकि सब लोग घूमने निकले पड़े हैं एक्सेप्ट मी यू, क्योंकि हम लोग फरीदाबाद में ही हैं। जो मुझे सुन रहा है मुझे पता है फरीदाबाद में ही सुन रहा होगा, क्योंकि फरीदाबाद से बाहर मेरी आवाज़ नहीं जाती है। जाती तो पूरी दुनिया में भी है, बट वो जाती है फोन के थ्रू। खैर, अभी आप सभी को बता दूं, रेडियो महारानी 89.6 पर अगले 4 घंटों के लिए मैं आ चुका हूं। 5 से 9 तक आप सभी के साथ रहूंगा, और इसी के साथ साथ छुट्टी का दिन है, रेस्ट का दिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है एंड गांधी जी का भी जन्मदिन है, और उसी के साथ साथ मेरे एक दोस्त का भी जन्मदिन है जो कि अभी घूमने निकला पड़ा है। तो मैं किससे पार्टी लूं? कोई है इधर जो पार्टी दे सकता है मुझे? छुट्टी का दिन है, आप लोग मुझे पार्टी दे सकते हो क्या? नंबर है मेरा 9654896896, सिंपल सा नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा एयर क्वालिटी की बात करेंगे फरीदाबाद में, और साथ ही साथ मुझे एक ऐसी फैमिली पता चली है जिसमें ना मतलब महीने का राशन 12 लाख रुपए का आता है। अंबानी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, राशन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो आटा दाल बेसन गेहूँ ये सब चीज़ें होती ना, उन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। 100 कुछ मेंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर बाद में बताऊंगा। और इसी के साथ साथ दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी आई है, बट हम फरीदाबाद वाले क्यों खुश रहें? खुश इसलिए रह सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे फरीदाबाद वासी दिल्ली जॉब करने जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी आई है। क्या है वो खुशखबरी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो परसों का जो मैच था उसके बारे में कुछ बात करनी है मुझे, क्यों करनी है करेंगे इसके बारे में भी बात। एंड ये है निचोड़ आज के शो का, अभी से बता दिया, 4 घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो अभी एक नंबर नोट कर लीजिए 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ढेर

0: दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
1: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
0: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
1: तुम जितनी कोशिश कर लो तुम सारा होगा कोई।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

अमेजिंग गाना था ना ये। और इसी गाने के साथ रेडियो महारानी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और एक बात बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि क्या आप लोगों को लगता है कि एक फैमिली में 100 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं?

बारे में बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जब इनके बारे में पढ़ा, आई वॉज टोटली शॉक्ड कि कोई फैमिली इतनी बड़ी भी हो सकती है क्या। 185 मेंबर्स हैं इनकी फैमिली में और 6 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है। अजमेर की ये फैमिली है, इंडिया फैमिली है, मतलब इंडियन फैमिली है, और 65 पुरुष हैं इस फैमिली में, 60 महिलाएं हैं और टोटल 60 बच्चे हैं। तो इसे कुनबा क्यों नहीं घोषित कर देते, जिला घोषित कर दो, मतलब इतनी बड़ी फैमिली, सोचो कितना खर्चा आता होगा, है ना। अब इनकी अगर खर्चे की बात करें तो इस फैमिली के अनुसार, या फिर मैं बोलूँ सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि इस फैमिली में 12 लाख रुपये खर्च होते हैं हर महीने सिर्फ और सिर्फ राशन पर, और रोज़ाना 50 किलो आटे से रोटियाँ बनती है। सोचो 50 किलो आटा गूंथता कौन होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे घर में जब आटा आता है तो कभी कभार बाय चांस अगर किसी दिन मेरा मूड कर जाए तो मैं ऐसी आटा गूंथ देता हूँ। अब 50 किलो आटा गूंथने में कितना टाइम लगता होगा और उससे रोटियां बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगता होगा, और सोचो एक दिन में सब्जियां कितनी बनती होगी, 15 किलो सब्जियां बनती है। अब जस्ट इमेजिन किसी दिन इनके घर में कोई प्रोग्राम हो जाए तो पनीर कितने किलो आएगा, सोचो मतलब कितना सारा पनीर लेकर आना पड़ेगा ना। और इसके अलावा इनके पास खेती की 700 बीघा जमीन है अभी तक, 12 इनके पास गाड़ियां हैं, 80 इनके पास टू व्हीलर्स हैं, सोचो 80 बाइक या स्कूटी या फिर साइकिल भी हो सकती हैं, और इसके अलावा इनके पास 11 ट्रैक्टर्स भी हैं। अब 12 कार हैं, 12 में 5 बंदे बिठा लेते हैं, 12 बजे 60 होते हैं, 60 लोग ही तो गाड़ी में बैठ पाएंगे, बाकी सारे क्या टू व्हीलर्स पर जाएंगे। तो ये सारे के सारे सवाल मेरे मन में आए। और आपको एक और बात बता दूं, इनके घर में सुबह शाम 13 चूल्हों पर खाना बनता है। सोचो इतने सारे लोग, रोटियां आज कौन बनाएगा, कल कौन बनाएगा, यही सब सोचते रह जाते होंगे, क्योंकि 185 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर 185। इतनी बड़ी फैमिली है इनकी, आजकल लोग तो 3 बंदों में ही गुजारा कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली, पता है ना सबको। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ, बातें और गाने यूं ही चलते रहेंगे।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है बस।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड जो भी बात बोलना चाहता हूं वो यही है कि देखो, MDR लागू होने वाला था ना, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। MDR लागू हो रहा है 15 अक्टूबर से लागू करने की बात चल रही थी और आज है 9th of October, बट इसकी डेट चेंज कर दी गई है और इसको कर दिया गया है 1 जनवरी 2027। अब इस पर लोग ना देखो सच भी बोल रहे हैं कुछ लोग बहुत झूठ भी फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने अभी से ही ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया UPI से, कह रहे नहीं नहीं हमारे ऊपर MDR लगेगा। अरे मेरे भाई प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिए, मतलब खुद से समझिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड एक और चीज़ आप सभी से बोलूँगा, आपके पास कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है ना रील के फॉर्मेट में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड के फॉर्मेट में, उस पर आँख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। देखो सबसे पहली चीज़ MDR होता क्या है। MDR का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो मर्चेंट को देने होते हैं बैंक को ताकि वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। अब ये पहले से भी लगा आ रहा था, अभी सबको बता देता हूँ। जितने भी मर्चेंट्स हैं जो लोग कार्ड मशीन यूज़ करते हैं तो उनको ऑलरेडी पहले से देना पड़ता था 2%, बट अब ये UPI पे हुआ है। बट UPI पे भी 2000 रुपये से ऊपर की पेमेंट पे हुआ है, यानी कि हमारे गली मोहल्ले नुक्कड़ में जो दुकानें हैं जो 2000 रुपये से ऊपर का सामान नहीं बेचते हैं उनके ऊपर कोई भी UPI पे चार्जेस नहीं लगते। तो कंज्यूमर के लिए तो वैसे

रेडियो महारानी कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहाँ एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहाँ की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

गाइज यू नो वॉट, इस वीकेंड पे बारिश हो सकती है और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और बारिश होगी ना तो मौसम पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और कल तो सैटरडे है, बट संडे को शाम को थोड़ी बहुत क्या या फिर हैवी वाली क्या मतलब 70-80% बारिश हो सकती है। एंड ये मैं खुद से बातें नहीं कर रहा हूँ, ये होने वाली है बस इसी संडे। और ये ना ऐसे कोई प्लान नहीं था कि इस बार बारिश होगी, बट कुछ कंप्रेशन डिप्रेशन टाइप का जोन बना, उसकी वजह से अब बारिश होने जा रही है। और मैं तो कहूँगा अच्छी चीज़ है, बारिश होनी भी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो एयर क्वालिटी 100 से ऊपर जा चुकी है, 150 के आसपास बार बार ट्रैवल कर रही है, कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे जा रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा स्मॉग वाली कंडीशन दिल्ली NCR में अभी बनी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस कंडीशन को ना जितना हो सके उतना लिमिट कर सके। एंड मैं क्या देखता हूँ रोड पे चलते हुए, हम लोग पोल्यूशन को कम करने के बजाय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर कूड़ा पड़ा होता है, लोग पता नहीं कौन सा, मैं क्या वर्ड बोलूँ, कौन सा भांग खाते हैं कि भाई आग लगा के चले जाएंगे। उनको पता नहीं क्या स्वाद आता है कि आग लगा दो मज़ा हो जाएगा। मतलब प्लास्टिक पड़ा है आग लगा दो, रबड़ पड़ा है आग लगा दो। क्यों लगानी है आग? सबसे पहली चीज़, आपको गंदगी ऐसी जगह पर फेंकनी क्यों है? मतलब एक इंसान पॉलिथीन फेंकेगा, उसके अलावा 10 इंसान उसी जगह पर आके फेंकना शुरू कर देंगे, और फिर वो धीरे धीरे वो एरिया डंप यार्ड बन जाता है। तो प्लीज़ अभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा हम ना करें। और वापस आते हैं अगर मौसम पे, तो कल का मौसम भी अच्छा रहने वाला है, कल सन्नी रहेगा, बट परसों से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और परसों से ही हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद टेम्परेचर ड्रास्टिकली 20 से 19 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ रेडियो महारानी एंजॉय करते जाइए, गाने चलेंगे आप सभी के लिए, सुनिए इस गाने को, वीकेंड वाला गाना है आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर। दिस इज आरजे गौरव।

0: कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो ज़रूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
0: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनना। जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
3: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे रास्ता।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

गाइस यू नो व्हाट, अभी ना बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें नाना पाटेकर की ही वीडियोस है और वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और अभी जो रीसेंट में वायरल हुई है वो है केबीसी सेट से वीडियो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर सभी का स्वागत है। एंड बहुत देर से बातें कर रहे थे, कल नाना पाटेकर साहब हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए और फिर उसके बाद उनकी निधन की खबर के बाद वैसे बहुत लोगों को शॉक लगा था। एंड उसके बाद सभी लोग कुछ ना कुछ अटकलें लगा रहे थे। वैसे बताऊँ आपको, उन्होंने ना एक मैसेज भेजा था अपने बेस्ट फ्रेंड को, लाइक रात को 2:30 बजे करीब उन्होंने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अगर वो शायद कॉल करते तो कुछ और कहानी होती। खैर अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, सब लोगों के मन में ना एक सवाल आ रहा है, मेरे मन में भी आया था कि वो इतनी ज़्यादा फेमस होने के बाद भी वो अपने गांव में क्यों रह रहे थे, मतलब गांव में क्यों जाके बस गए थे। तो उन्होंने ये चीज़ केबीसी 16 के सेट में बताई थी। और इसी के साथ साथ उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो, मतलब शहर छोड़कर गांव में क्यों रहते हो, उन्होंने बोला जितना चाहना उससे कई गुना ज़्यादा मिला है और मैं इस इंडस्ट्री का नहीं हूँ, यहाँ सिर्फ काम करता हूँ और वापस भाग जाता हूँ, किसी पार्टी में नहीं जाता, मैं गाँव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूँगा। तो ये दिखाती है सिंप्लिसिटी, लाइक इतना कुछ फेम पाने के बावजूद वो शख्स वहीं पर रहा जहां पर उनको प्यार मिलता था। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये एक बहुत बेहतरीन लाइन बोली थी कि ज़रूरतें अगर लिमिटेड हो ना तो गांव में रहना आसान हो जाता है। और ये रियलिटी है, आप किसी भी गांव में रहने वाले इंसान से पूछ लीजिए जिसके पास सब कुछ हो, वो इंसान गाँव छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं होगा, उसको नहीं चाहिए ये भाग दौड़ वाली लाइफ, उसको चाहिए बिल्कुल सुकून वाली लाइफ। तो शायद आप लोग भी ये सब चीज़ें सोचते होंगे, सोचिए इसके बारे में। और अभी रेडियो महारानी सुनते जाइए, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ। टेंशन वेंशन दूर कर दीजिए क्योंकि गाने का नाम है टेंशन।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: गजन साभाही माई पपाई वेल करे वाली
1: सांवला सा रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे
2: मैं माजे चाशनी तू माजे खास में तुझा

तो गाइस आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने सपने में देखा हो कि आप कहीं घूमने गए हो किसी नई जगह पे, जो जगह शायद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे देखी थी, वहां आप घूम रहे हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। सपनों को डिकोड करने का वक्त आ चुका है और सपने सबके आते हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट सपने आते हैं, बट काफी बार ना सपनों का कुछ मतलब हो सकता है। तो देखो, जो मैंने बात बोली कि सपने में कहीं आप घूमने गए हो, खुद को घूमते हुए देख रहे हो, ट्रैवल करते हुए देख रहे हो, तो इसका मतलब है जीवन में कोई बदलाव। सपने में अगर आप ये सब देख रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा सिंबल है कि आपके जीवन में कोई बड़ा चेंज आने वाला है, यहाँ पर कोई नई शुरुआत होने वाली है। आज़ादी की चाह भी हो सकती है आपके अंदर के, हाँ आप चाहते हो कि आज़ादी चाहिए मुझे सब चीज़ों से, ये जो टेंशन है, तो काम का स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों से मुझे आज़ादी चाहिए। और हो सकता है आप फ्रीडम चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ न्यू सीखें, न्यू एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं आप लोग। अच्छा, सपनों में अगर पहाड़ों पर घूम रहे हो ना आप लोग, तो हो सकता है कि आपके जो जितने भी गोल्स हैं वो दिखाते हैं, मतलब गोल्स पहाड़ों को दिखाते हैं कि आपके एंडेवर्स हैं, आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। और अगर आप समुद्र किनारे घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में एक इमोशनल उतार चढ़ाव हो रहा है इस टाइम। और अगर आप किसी ऐसे शहर में जहां पर आप किसी को नहीं जानते, तो इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारी नई जिम्मेदारियाँ या फिर चुनौतियाँ आ सकती है। और अगर आप सपनों में कहीं मंदिर या फिर किसी अच्छी स्पिरिचुअल जगह पे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। तो क्या आप लोगों को कभी ऐसा सपना है? और अगर इसके अलावा कोई और सपना है तो वो भी हमें बता दीजिए, क्योंकि डीकोड करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, गौरव हमें आप सभी के साथ, बातें और गाने यहीं चलते रहेंगे।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी से मैं हूं आरजे गौरव और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम शो चल रहा है 89.6 एंड आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आस्था शर्मा जी जो कि वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे पर मेरे साथ बात करने के लिए भी हैं और वैसे आप सभी को बता दूं शी इज अ सिंगर राइट नाउ। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, कब मन में आया कि हमें सिंगिंग करनी चाहिए?
1: मेरे को बचपन से शौक था गाने का।
0: अच्छा, गाने का बचपन से शौक था, टीवी देखते देखते या फिर गाने सुनते सुनते?
1: एक्चुअली मैं ऋचा शर्मा जी, सोनू निगम जी की भेंटें सुनती थी
0: जी,
1: तब से मुझे शौक पड़ा और मैं बहुत ज्यादा सुनती थी।
0: तो जब आप गाती हैं तो आपको कैसा फील होता है?
1: जब मैं गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच कहूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि गाना ही मुझे गा रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। और मुझे कुछ मतलब जब मैं गा रही होती तो मुझे उस समय कोई नहीं दिखता, लगता है सिर्फ गाना है और मैं हूँ,
0: वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं जब गाता हूँ तो फिर उसके बाद घर वाले मना कर देते हैं। अच्छा, सिंगिंग में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
1: पंजाबी
0: फोक म्यूजिक। तो हमारे सारे लिसनर्स के लिए छोटा सा एक पेशकश हो जाए, छोटी सी, बिल्कुल 2 लाइनर्स या 4 लाइनर्स।
1: ओके,

दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना हो सबनू समझ के।

Amazing. And it was really amazing. तो रेडियो महारानी 89.6 पर हम लिखते छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद वापस आकर आज तक जी से और भी बातें करेंगे. आप सुन रहे रेडियो महारानी 89.6, मैं हूँ गौरव आपके साथ.

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइकी की
4: आशा, इस पंजाब।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आस्था शर्मा जी और वर्ल्ड डिस्लेक्सिया डे पर आज जिनसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारी पब्लिक के लिए, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, उनको एक बार बता दीजिए डिस्लेक्सिया एग्जैक्टली होता क्या है।
1: डिस्लेक्सिया होता है भूलने की प्रॉब्लम।
0: ओके।
1: और लिखने का भी
0: थोड़ा सा हो जाता है, जैसे तारे जमीन पर मूवी में था।
1: आई गेस करेक्ट,
0: एम आई राइट? तो आपने इस सब के बावजूद आपने गाना सीखा, आपने गाने खुद से भी क्या लिखे हैं? हाँ या
1: नॉट एट ऑल? नो।
0: ओके ओके ओके। चलिए अगर मैं बोलूं आपसे कि आपने सबसे पहली बार स्टेज पे कब गाया था, पहले तो ये सवाल है।
1: सबसे पहले स्टेज पर कब गाया था? जब मैं 6 ईयर्स की थी, 6 साल की, तब मैंने सबसे पहले गाया था।
0: ओके। और कितनी नर्वसनेस थी, कुछ याद है आपको?
1: थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं।
0: मैं तो अभी भी, अगर मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं अभी भी नर्वस हो जाता हूँ। चलिए खैर, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आस्था शर्मा सिंगर भी हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक गाना गा के हमें सुनाया अभी थोड़ी देर पहले। बट मैं चाहूंगा आस्था जी, आप एक और कोई गाना जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है वो हमारी पब्लिक को सुना दीजिए।
1: मैं माहिम ताहिर का सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, झूड़िया।

अमेजिंग अमेजिंग। और मुझे लगता है जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सबके मन में एक ही चीज आ रही होगी कि कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे। कानों में शहद ही घुल गया। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच आस्था हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आस्था जी की मदर भी हैं तो उनसे भी बात करेंगे डिस्लेक्सिया के ऊपर मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर चला रहा हूँ एक गाना। मेरा नाम है गौरव एंड आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: जरूरत हो कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर आप हमें बताइए।

0: स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। गौरव हूं मैं आप सभी के साथ एंड मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है आस्था शर्मा जी और उनके साथ उनकी मदर साशा शर्मा जी। मैम स्वागत है पहले तो आपका स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: और मैम इसी के साथ साथ वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे पर एज अ मदर आपने आस्था जी का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आपने क्या क्या किया है?
1: आस्था जी का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उसको एक बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए और उस पूरा घर में परिवार का सभी का वातावरण वैसा बना के रखना
0: जी,
1: और उसको बहुत कैजुअल फील कराना
0: जी,
1: और इस तरह से। और इसके अंदर बहुत अहम भूमिका है स्कूल की, स्पेशल एजुकेशन की, जो कि स्पेशल एजुकेटर्स की, जो कि बच्चे को, क्योंकि ये सिर्फ एक पढ़ाई करने का एक तरीका अलग है
0: जी,
1: सिर्फ इतना ही फर्क है। और अगर हम समाज से डरते हुए, परिवार से, परिवार में लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं बच्चा तो हाइपर एक्टिव है या अच्छा थोड़ा कर नहीं रहा, कर लेगा, वहीं पर हम चूक जाते हैं
0: जी।
1: बस मेरा लिसनर से यही कहना है कि अगर बच्चे को किसी तरह से परेशानी आती है
0: जी,
1: तो उस परेशानी को बहुत ध्यान देते हुए, समझते हुए पॉजिटिवली कि ये ऐसे ही नहीं कर रहा,
0: बिल्कुल
1: ये उसको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है,
0: बिल्कुल।
1: और वो सपोर्ट आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो हम ऐसी समाज में है, देश में है, जो ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो कि इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, अच्छे स्कूल्स हैं जो गाइड बताते हैं आपको कि आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आज जो आज की डेट के अंदर स्कूल है उसके अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत तरह से गाइड किया जाता है, बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर टच थेरेपी से, कलर से, सैंड पे और उस तरह से बहुत तरह से करवाया जाता है। और उससे कुछ भी नहीं, बस जुटे रहना पड़ता है,
0: बिल्कुल,
1: अपना बच्चा है। और जो पेरेंट्स होते हैं, इसीलिए तो भगवान ने चुना है पेरेंट्स को, कि वही होते हैं जो सही राह दिखा सकते हैं। और लेकिन फिर से यही कहूंगी कि डरना नहीं है, एक्सेप्ट करना है,
0: बिल्कुल,
1: एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा। और समय से, समय रहते आज मैं यहाँ बैठी हूँ रेडियो महारानी में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने बुलाया
0: जी।
1: और जैसा कि आस्था ने कुछ अलग तरह से जर्नी को सीखते हुए और अपना फिर से ट्रैक पर आ जाना,
0: बिल्कुल,
1: और अपना बहुत बढ़िया आज वो इसी कारण से संगीत में इन ऊंचाइयों तक पहुंची कि वो नेशनल लेवल में पूना में जीती
0: जी।
1: फोक राउंड उसने जीता, ये तो जर्नी का पार्ट है
0: जी।
1: बट फिर से हम उसी चीज के ऊपर आते हैं कि जो उसको चैलेंजेस रहे
0: जी,
1: उसको हम पेरेंट्स जो हैं उसका ध्यान रखें, उस बात का ध्यान रखें, और बहुत पॉजिटिवली घर में भी वैसा वातावरण बनाए रखें। और आस्था के लिए वो वातावरण, माता और पिता दोनों, अकेली माँ कुछ नहीं कर सकती
0: जी,
1: जब तक पिता का साथ नहीं हो तो, और उन दोनों के साथ साथ पूरा परिवार,
0: बिल्कुल,
1: आपके आसपास, आसपास के लोग, मिलने वाले लोग, इतना पॉजिटिव और प्यार भरा माहौल जिसने कि आज आस्था को यहाँ सिंगर बना दिया,
0: बिल्कुल। तो इसी के बारे में और भी ढेरों बातें करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। गौरव हूं मैं आप सभी के साथ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साशा शर्मा एंड आस्था शर्मा।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: वर्ल्ड डिस्लेक्सिया डे पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आस्था शर्मा जी एंड उनकी मदर साशा शर्मा जी। आस्था शर्मा ने तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हमें सुनाए और मैम से भी बातचीत चली रही है, तो मैम एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कब एहसास हुआ पहली बार कि आस्था के अंदर एक सिंगिंग का कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट भी है?
1: आस्था घर में भजन गाने सुनती थी।
0: ओके।
1: जैसे जनरली माँ सुबह भजन लगा देती थी,
0: जी।
1: मैं लगा देती थी और गाने सुनती थी और ये गाती थी।
0: ओके।
1: शायद बचपन से मेरा भी शौक रहा और मैं भी बहुत गाती थी
0: जी।
1: तो थोड़ा सा बच्चे के अंदर भी शौक
0: आता
1: है। तो आस्था ने सुनते सुनते परिवार में किसी के भी सबके सामने कुछ सुनाने लग जाना, छोटा छोटा गाना करना
0: जी।
1: तो उसके बाद ही इसी लगभग 8 साल की थी तो इसको इंडियन क्लासिकल सीखने के लिए
0: आपने आगे बैठा
1: स्टार्ट कर दिया था। उसकी जर्नी स्टार्ट कर दी थी।
0: ओके। तो मैम उनके टैलेंट को नर्चर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया आपने?
1: टैलेंट को नर्चर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही किया था कि उसको अच्छे गुरुओं के पास भेजा गया
0: जी।
1: और उन गुरुओं ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी और आस्था को अलग अलग एक एक ही गुरु से नहीं सीखी आस्था
0: जी।
1: आस्था अलग अलग गुरुओं से सीखी है। इंद्रेश मिश्रा जी जो छन्नूलाल मिश्रा जी के शिष्य हैं और रोमी सेन गुप्ता और राजन साजन मिश्रा जी के बेटे जो हैं रितेश मिश्रा जी, उसके बाद लास्ट जो अभी तक भी जिनके टच में आस्था है वो ऑल इंडिया रेडियो के हरिचरण वर्मा जी, जो अभी कुछ समय पहले उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनसे भी 1 साल आस्था ने शिक्षा ली। ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक डायरेक्टर थे वो।
0: ओके।
1: जिनसे की शिक्षा ली और अब ये टच में है मयंक वर्मा जी, उन्हीं के बेटे हैं मयंक वर्मा जी जिनके साथ आस्था जी ने अब तक गाइडेंस उनकी ले रही हैं।
0: ओके।
1: हाँ जी।
0: तो मैम इसी के साथ साथ एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बहुत शॉर्ट में आंसर चाहता हूँ कि लाइक स्टार्टिंग में आपको आस्था जी को समझने के लिए और उनकी या फिर उनकी नीड्स को समझने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े?
1: 2-3 साल की थी आस्था तो हाइपर एक्टिव थी बहुत।
0: ओके।
1: हाइपर एक्टिव थी और हाइपर एक्टिव तो एक जनरल ही माना जाता था, जो आज के टाइम पे चीजें लोग अलर्ट रहते हैं बट पहले जनरल माना जाता था, चंचल है, शरारती है और उसके साथ साथ नो डाउट माँ सिखाना शुरू कर देती है बच्चे को, लिखना सिखाना शुरू कर देती है। तो ये शुरू में तो मुझे लगा कि ठीक है बच्चे ऐसे ही लिखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अभी मैंने मतलब इस चीज को समझ नहीं पा रही थी, थोड़ा अटपटा लगता था मुझे कि इसको टाइम लग रहा है, लेकिन जब स्कूल गई तो स्कूल के अंदर वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर फोनेटिक्स का काफी अच्छा मतलब स्टार्टिंग से वो थोड़ी एडवांसमेंट थी
0: जी।
1: शायद इसीलिए वहाँ के प्रिंसिपल ने तक बात टीचर्स द्वारा पहुंची होगी तो उन्होंने बुलाकर बताया कि बच्चे को थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। अभी हमारे पास ऐसा स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है।
0: okay.
1: तो आप उनकी टीम होती है स्पेशल एजुकेटर्स की, तो आप अगर वहाँ जाकर बात करते हैं तो थोड़ी ये तरीका अलग है और कुछ नहीं है
0: जी।
1: इसको कोई आप प्रॉब्लम मत समझिए, ये तरीका अलग है और इसी को आपने वहाँ जाकर उनकी बात को हमने ध्यान से सुना समझा मेरे हस्बैंड ने और मैंने
0: जी।
1: और मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा
0: जी।
1: और फिर हमने 4 साल की उम्र में ही हम स्पेशल एजुकेटर्स के पास जाना स्टार्ट हुए और हमने फिर उसको नो डाउट आज जो आस्था यहाँ तक पहुंची है
0: जी।
1: उसमें उस स्कूल का स्पेशल एजुकेटर का उनकी टीम का
0: बहुत बड़ा रोल है,
1: बहुत बड़ा रोल
0: जी। तो इसी के साथ साथ और भी बातचीत होंगी साशा शर्मा जी से, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज वर्ल्ड डिस्लेक्सिया डे पर हम लोग बात कर रहे हैं साशा शर्मा जी से, जो कि मदर है आस्था शर्मा की। आस्था शर्मा जो कि एक सिंगर हैं और उन्होंने अभी बहुत सारे बेहतरीन गाने सुनाए। अगर आपने मिस कर दिए, डोंट वरी, हम लोग आपको फिर से ज़रूर सुनाएंगे। बट अभी फ़िलहाल एक क्वेश्चन है साशा जी से। मैम, एक सवाल जो आजकल के पेरेंट्स के लिए है, लाइक पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ दो लाइनर्स?
1: पहली चीज फिर से आती हूँ, एक्सेप्टेंस
0: जी।
1: एक्सेप्टेंस, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस।
0: बिल्कुल।
1: जब पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस होता है तो बच्चे में वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर हो जाता है
0: जी। बिल्कुल।
1: और हर बच्चा एक बहुत ही सुंदर जीवन लेकर आता है धरती पर, और सभी में कुछ ना कुछ इतनी खूबसूरत आर्ट छिपे होते हैं
0: जी,
1: जो कि कोशिश करने पर, ध्यान देने पर बाहर आते हैं। और उसके ऊपर 200% हम बच्चों को दें, लेकिन साथ साथ समय रहते हुए देरी ना करें
0: जी।
1: किसी भी भय से दूर रहें, समाज, परिवार, बात करके देखिए, सभी साथी होते हैं।
0: बिल्कुल, जो अपने होते हैं वो तो हमेशा साथी होते
1: हैं, हमेशा साथ।
0: तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: एक लाइन में फिर से
0: जी, जी बिल्कुल बोलिए।
1: मैं पेरेंट्स से कहूंगी कि कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करेगी उनके जैसा।
0: क्या बात है, और ये लाइन मतलब सीरियसली बहुत अच्छी है। और इसी के साथ साथ मैं बस फिर से मैम की बातों को रिपीट जरूर करना चाहूंगा कि एक्सेप्ट कीजिए, सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस, दूसरा है सपोर्ट, क्योंकि आपका सपोर्ट ही उनको आगे ले जा सकता है। और इसी के साथ साथ तीसरी चीज है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, वो टैलेंट जो हर किसी में नहीं होता, उसको आप ढूंढ निकालिए। और जो मैम ने एक लाइन बोली, मैम एक बार फिर से वो लाइन,
1: कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करे उसके जैसा, आपके बच्चे जैसा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी के साथ साथ आप रेडियो महारानी सुनते
1: रहिए। रेडियो महारानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज यहाँ बुलाया गया। और सिर्फ शायद एक ही कारण रहा कि वो एक्सेप्टेंस थी, थोड़ा सपोर्ट किया, और आस्था जी जो है वो एक गायकी में कर रही हैं
0: जी। और इसी के साथ साथ हमारे साथ रेडियो में, स्टूडियो में मौजूद है आस्था शर्मा जी, जिन्होंने गाना तो गाया था, बट अब मैं चाहूंगा वो हमारी टैगलाइन जरूर बोल दे। तो आस्था जी मेरे पीछे रिपीट कर दीजिए, रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: गाइज ऑफिस से घर पहुंच गए या फिर अभी भी आप लोग इस ट्रैफिक में फंसे हैं? और ट्रैफिक में जब फंसे होते तो दिमाग की दही होना तो बनता है ना।
1: रेडियो का गौरव आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। परसों शाम को भूकंप आया, कल रात को कुछ भी नहीं आया, आज रात को नहीं कल रात को आई थी यार सेल आई थी और उसके अलावा आज सुबह एक बहुत बुरी खबर आई। उसके बाद अगर मैं बात करूं अभी की, तो पूरे दिन ऑफिस से सारी टेंशन लेने के बाद इंसान थका हारा घर जाता है और घर जाके फिर घर के अंदर जाके कोई नहीं पूछता कितना कमाया सब पूछते कितना कमाया, बस एक माई होती है जो पहले खाना देती है, बोलती बेटा खाना खा ले, फिर बहू भी पूछ लेती है कितना कमाया खैर जोक से बात, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की टेंशन वगैरह सब कुछ लेकर वापस घर क्यों जाते हैं? क्योंकि देखो टेंशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, आपकी रिलेशंस ख़राब कर सकती है। एंड जितनी भी टेंशन है आपको, मैं बस आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारी टेंशन ना घर से बाहर निकलते ही ले आया कीजिए और घर के अंदर भूल जाया कीजिए। मतलब ऑफिस से आपको घर नहीं लेके जानी सारी टेंशन, काफ़ी बार घर की भी टेंशन होती है बट वो ठीक है, बट ऑफिस वाली टेंशन ऑफिस में छोड़ कर आएंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। सोचिए इसके बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए चला रहा हूँ गाना, सुनिए इस गाने को, एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर, क्योंकि कल तो सैटरडे है ब्रो।

0: जरूरत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों? क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं
0: तो फिर हम

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

आज एक सवाल मेरे मन में आया और ये सवाल ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और मतलब देखो, सुबह ठंडा था और कल रात को भी ठंडा था, तो मेरे मन में सवाल आया कि क्या NCR में बर्फ पड़ सकती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। जस्ट इमेजिन, फरीदाबाद में आप सुबह सुबह उठे दिसंबर के महीने में और बर्फ पड़ रही है आसमान में। ऐसा वैसे होने नहीं वाला, बट स्टिल सवाल आया था मन में कि दिल्ली NCR में क्या कभी बर्फ पड़ सकती है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर रिसर्च ही क्यों ना कर ली जाए। देखो, दिल्ली में ना काफी बार ऐसा हुआ है कि 0 डिग्री

के आसपास टेम्परेचर पहुंचा है। और दिल्ली में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे नीचे भी चला जाए तो भी हमारी जो डेमोग्राफिक जो स्टेट है ना, मतलब डेमोग्राफिक जो स्थिति है उसकी वजह से और मौसम के भी बहुत सारे कारण होते हैं, उसके चलते दिल्ली में कभी भी बर्फबारी हो ही नहीं सकती। अब देखो IMD ने बोला कि बर्फबारी के लिए क्या होता है, बादलों की ज़रूरत होती है, और दिल्ली में बादल रहते भी हैं नो डाउट, बट ये हीट को रोकते हैं। मतलब जो सर्दियों के टाइम जो आप बादल देखते हैं ना, काफ़ी बार ऐसा भी होता है स्मॉग होता है, स्मॉग के बाद फिर ऊपर बादल होते हैं, वो हीट को रोकते हैं। और दिल्ली में 0 से नीचे तापमान जाना बहुत ज़्यादा रेयर है, तो इस वजह से बारिश तो होती है बट बर्फ नहीं पड़ती है। और आप सभी को याद होगा साल 2018 जब बहुत सारे ओले ओले पड़े थे पूरे दिल्ली NCR में, और फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद पूरा का पूरा बर्फ वाला हो गया था। इतनी ज़्यादा ओले पड़े, इतने ओले पड़े और वो जम गए थे सड़क पर, ऐसा लग रहा था अभी रिसेंटली बर्फबारी हुई है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हाँ, एक तरीका है जिससे दिल्ली NCR में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है, वो है AI। बट मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा AI पे वीडियोस ना बनाया कीजिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करता है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और आज जैसे मैंने बोला था आप लोगों को गाने बहुत सारे चलाऊंगा, तो उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.7।

0: आए शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे
1: मैं माझे चाशनी तू माझे खास मी तुझा समर्थक उद्या पण आज भी बोले लो किस्मती बोले आज नहीं बनू न

0: कभी आप लोगों ने सपने में अपने आप को फेमस होते हुए देखा? मतलब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, सब दुनिया आपको जानती है और सब आपके सामने हाथ हिला रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। रेडियो का गौरव, आरजे
1: गौरव। पता है ऐसे सपने ना हमेशा साइकोलॉजी, हमारी जो डिजायर्स होती है, ख्वाहिशें जिन्हें हम लोग कहते हैं, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव आपके साथ। एंड देखो, सपनों की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो इस टाइम हम लोग सपनों को डिकोड करते हैं रोज, तो सपनों की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सच ही हो जाए, बट जरूरी ये भी नहीं कि वो सच ही ना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कभी देखते हो अपने आप को सपने में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुके हो, लोग आपको जानते हैं, तो मतलब यही है कि आपकी लाइफ में आपको चाहत है कि आपको हर चीज़ में अप्रिसिएशन मिले। और इसके अलावा तारीफ की चाहत है आपके अंदर, या फिर वैल्यू, आपकी कहीं पर वैल्यू नहीं हो रही ना, तो ये सपना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट और स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, अपने ऊपर आपको भरोसा होगा अगर, तो ऐसे ही सपने आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है और आपका सक्सेस की तरफ एक कदम और हो जाएगा। यानी कि आप अपने गोल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कामयाबी पाने के लिए आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ना पूरी ज़िंदगी भर अटेंशन मिलती ही नहीं है, वो या तो अकेलापन फील करते हैं या फिर इग्नोर महसूस करते हैं, तो ऐसे सपने ये भी दिखाते हैं कि आप भी शायद ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अब देखो, सपने के सिचुएशन के हिसाब से मतलब होते हैं। अगर आप फेमस होकर खुश थे तो ये पॉजिटिव साइन है, ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसके अलावा अगर आप फेमस होकर भी दुख थे, परेशान थे या फिर डरे हुए थे, तो मतलब यही है कि आपको रियल लाइफ में भी लोगों के जजमेंट से डर लगता है। तो देखो, कभी भी पब्लिक फेयर तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक फेयर है, तभी तो माइक के पीछे बैठ के बात कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे ही रोज़ाना सपनों को डिकोड करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आरजे गौरव इन द हाउस, प्यार से रेडियो को गौरव बोलते हैं, एंड एके आका आका नहीं एके जिम ब्रो, रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और हल्की सी इंजरी हो जाती है, बैक में पेन आ गया, कंधे में पेन आ गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरे कोई नहीं ठीक हो जाएगा और कर लेते हैं, बाम लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो आप सभी के साथ जिम ब्रो है और जिम ब्रो आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, पेन के थ्रू हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और उस मूवमेंट को तो बिल्कुल नहीं करना है जिससे इंजरी हुई है। और एक सेट करके देख लेता हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको कि एक सेट करके देख लेता हूँ क्या पता इंजरी अब ठीक हो गई हो, नहीं नहीं नहीं नहीं, जब तक पेन पूरी तरह से नहीं जाता तब तक आपको ये सब नहीं करना है। और इसके अलावा इंजरी को कंपेंसेट करने के लिए फॉर्म ख़राब करने वाला वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना, जिसमें फॉर्म ख़राब हो जाएगी तो और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। और पेन किलर्स लेकर पेन को मास्क करके हैवी ट्रेनिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और सिर्फ इसलिए सेम रूटीन पर वापस मत जाना क्योंकि पेन थोड़ा कम हो गया है, जब तक पूरी रिस्ट नहीं मिल जाता तब तक बिल्कुल भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। अब देखो पहले क्या करना है, पहले इंजरी की आपको सिवियरिटी देखनी है कि अगर बहुत ज़्यादा पेन है या फिर हल्की फुल्की स्वेलिंग है या फिर डिफॉर्मिटी नमनेस टिंगलिंग ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, मेडिकल इवेल्यूशन करना है अपना। और शुरुआती फेज़ में आपको रेस्ट लेना है, पेनफुल एक्टिविटी अवॉइड करनी है और जितना हो सके मूवमेंट कंफर्टेबली करो अपनी। और इसके अलावा डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है अगर आपका पेन बढ़ता है तो। अगर लाइट पेन है तब आप रेस्ट लीजिए, रेस्ट से भी ये पेन सबसाइड कर जाएगा। और ये थी आज की जिम ब्रो की एडवाइस, और ऐसी ही ढेर सारी एडवाइस लेकर आता रहूंगा। इसके लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइकी की
4: आज़ा इस पंजाब

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी खराब चल रही हो या फिर बहुत ज्यादा खराब चल रही हो, बट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आ जाता है डेली बेसिस पे जो कहता है, भाई तेरे तो मजे ही मजे हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? ऐसा होता है ना, काफी बार हम लोगों को लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मजाक में भी कभी ऐसा अपने लिए मत बोलना, ये मैं रियलिटी में कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, भगवान ना ऊपर वाला हमें सब कुछ देता है और उसके बाद भी हमारी कंप्लेंट्स रहती है। अरे उन लोगों को देखो जिनके पास छत नहीं है, उन लोगों को भी देखो जिनके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं है, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को देखो, क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें मिल रही है? क्या आप ठीक से चल पा रहे हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप खाना टाइम पर खा पा रहे हैं? तो से थैंक्स टू गॉड, हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं हम अपने से नीचे वाले को भी देखें, ऊपर वाले को देखें। ऊपर वाले को ज़रूर देखो, जो आपसे अच्छी पोजीशन पर है उसको देखो, मगर सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर होने के लिए कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा है। आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी ब्रो, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। गीता जी में भी लिखा है कर्म कीजिए, क्योंकि बिना कर्म करे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने बारे में गलत कभी भी नहीं बोलना है। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करो कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम रिच। मैं अक्सर अपने आप में बोलता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कैसा है, मैं बोलता हूँ हैंडसम हूँ। तो आप लोग भी ये सब चीज़ें बोल सकते हैं अपने बारे में। कोई पूछे कैसा है, बोल देना अमीर हूँ, क्या पता जल्दी हो जाओ। तो ऐसी ऐसी बातें बोली अपने बारे में। और देखो, आज का ज्ञान मुझे लगता है यहीं पर खत्म करते हैं, और रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि बातें और गाने तो चलते रहेंगे, और उसी में से आप सभी के लिए ये गाना MC Square की आवाज में लाडो। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। मैं निकलता हूँ यहाँ से, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ। मिलूंगा कल शाम को 5 से।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, मैं हूँ आपकी इश्क बाजिया की इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर आपका अपना शो इश्क बाजिया। और अब वक्त है उस हिस्से का जहाँ थोड़ी सी बात होगी मोहब्बत की, थोड़ी सी जिंदगी की और थोड़ी सी उन फीलिंग्स की जिन्हें हम नॉर्मली बोल नहीं पाते, क्योंकि ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। और आज की शाम की शुरुआत करते हैं अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर आ गया है और ये महीना मेरा बहुत ही पसंदीदा महीना होता है। मुझे लगता है अक्टूबर का अपना ही मूड होता है यार। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक, शाम को आसमान का थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाना, चाय कॉफी का अचानक ज्यादा अच्छा लगना और बिना किसी खास वजह के भी मन का थोड़ा

0: अच्छा हो जाए। शायद मौसम का असर है या शायद अक्टूबर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी बड़ी खुशियों का नाम नहीं है, कभी अच्छी कॉफी भी काफी है, कभी कोई फेवरेट गाना, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी किसी दोस्त का अचानक फोन, और कभी बस बैल्कनी में बैठकर ठंडी हवा को महसूस करना। लेकिन आज हम अपनी जेनरेशन में एक फनी सी चीज करते हैं, हमें खुशी चाहिए लेकिन वो भी थोड़ी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट सनसेट चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्ट करियर, परफेक्ट वीकेंड, और अगर ये सब एक साथ नहीं मिला तो लगता है लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ है। जबकि शायद खुशी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, शायद अक्टूबर की तरह ही है, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा म्यूजिक और बस मूड बन गया। तो आज इस अक्टूबर में थोड़ा स्लो नहीं बल्कि थोड़ा मोर अलाइव होने की हम बात करेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी चीज है, हर दिन उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है यार। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये है हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना।
1: अजी डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद के इंचो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
1: तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट एंड बेकर्स, सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

0: बाजी।
1: वेलकम बैक, शो है इश्क बाजिया। मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आपने नोटिस किया है, हम हैप्पीनेस को भी प्रोजेक्ट बना देते हैं। मंडे को सोचते हैं फ्राइडे आएगा तो खुश होंगे, फ्राइडे को सोचते हैं वीकेंड आएगा तो खुश होंगे, वीकेंड पर सोचते हैं वेकेशन आएंगे तो खुश होंगे, वेकेशन में सोचेंगे काश रोज ऐसी लाइफ होती, और जब रोज ऐसी लाइफ नहीं होती तो वापस मंडे से शिकायत शुरू। मतलब हैप्पीनेस भी हमारी वेटिंग लिस्ट में पड़ी रहती है, और शायद इसी चक्कर में जो हमारे पास है हम उसका मजा नहीं लेते हैं। अक्टूबर की शाम को ही देख लीजिए, कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई लाइफ चेंजिंग अनाउंसमेंट नहीं आया, बस हवा थोड़ी अच्छी लगने लगी, सूरज थोड़ा जल्दी नरम हुआ, और सड़क किनारे पेड़ों से कुछ पत्ते गिरे, लेकिन सीन पूरा सिनेमैटिक हो गया। शायद हमें भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा सिनेमैटिक होना चाहिए, बिना किसी रीजन के अच्छे कपड़े पहन लेना, अकेले कॉफी पीने निकल जाना, अपने पसंदीदा गाने पर फुल वॉल्यूम में गाना, किसी दोस्त को अचानक कॉल करके कहना चल आज मिलते हैं, क्योंकि हर खुशी के पीछे कोई बड़ी वजह हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी आज मन किया भी एक परफेक्टली गुड रीजन है, और आज की जनरेशन को शायद ये परमिशन खुद को देनी चाहिए कि हर चीज प्रोडक्टिव होनी जरूरी नहीं, हर दिन सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं, हर मोमेंट इंस्टाग्राम वर्दी होना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट सिर्फ हमारे लिए होते हैं, और शायद वही सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। मैं हूं गीत, और अक्टूबर की इस खूबसूरत शाम में एक और खूबसूरत सा एहसास लेकर ये गाना सुनते हैं।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन। एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

एक चीज बहुत प्यारी सी लगती है। ये महीना आपको थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक बना देता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और ये है इश्क बाजियां। अब ये रोमांस सिर्फ किसी इंसान के साथ होना जरूरी नहीं, कभी अपने शहर से प्यार हो जाता है, कभी शाम के आसमान से, कभी किसी पुराने गाने से, कभी सड़क किनारे लगी छोटी सी चाय की दुकान से भी, और कभी कभी बस अपने आप से। हम इतने बिजी हो गए हैं ना कि अपने साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। फोन हाथ में है, ईयरफोन्स कान में है, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। दो मिनट खाली बैठो, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, लेकिन कभी अक्टूबर की हवा में फोन थोड़ा नीचे रख कर देखिए, शायद आपको पता चले कि आसपास कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। किसी पेड़ पर नई कोपल, किसी घर की बालकनी पर रखे पौधे पर फूल, सड़क पर शाम की रोशनी, किसी के हाथ में गर्म चाय। और फिर शायद आप सोचें, यार लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, मैं बस इसे देख नहीं पा रही हूँ। हमें हर समय कुछ हासिल करने की जल्दी रहती है, लेकिन कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए भी होते हैं। तो इस अक्टूबर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बस कहीं जाइए, अपना पसंदीदा गाना लगाइए, कुछ अच्छा खाइए और बिना किसी गिल्ट के एंजॉय कीजिए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, कभी कभी इसे थोड़ा सा फील भी करना पड़ता है। मैं हूँ इश्क बाजियां की गीत और आप सुन रहे हैं इश्क शायराना रेडियो महारानी पर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और अक्टूबर से मेरी सबसे फेवरेट बात पता है क्या है? ये महीना हमें कोई बड़ी स्पीच नहीं देता, बस मौसम बदल देता है। हवा बदलती है, सुबह बदलती है, शामों का रंग बदलता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन मूड हमारा थोड़ा थोड़ा बदल ही जाता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, हर चीज को ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं, बस कभी कभी अपना रूटीन बदल कर देखिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, किसी दिन रास्ता बदल कर जाइए, नया गाना सुनिए, किसी ऐसे दोस्त को कॉल कीजिए जिससे महीनों से बात नहीं हुई है, किसी नए कैफे में बैठकर कॉफी पीजिए। छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी चीजें तो दिन को दिन बनाती हैं, और शायद यही अक्टूबर का सीक्रेट है। नई शुरुआत हमेशा जनवरी की पहली तारीख को नहीं होती, कभी वो अक्टूबर की किसी शाम को भी हो सकती है, किसी रैंडम डिसीजन से, किसी अचानक निकली ड्राइव से, किसी नए गाने से, किसी नए आइडिया से, या बस इस थॉट से कि चलो आज थोड़ा अपने तरीके से जीते हैं। तो अगर अक्टूबर की हवा आज आपके शहर में भी थोड़ी बदल गई है तो उसे सिर्फ महसूस मत कीजिए, उसके साथ अपना मूड भी बदल दीजिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा गाइए, थोड़ा प्यार कीजिए, और सबसे जरूरी, खुश रहने के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह मत ढूंढिए, क्योंकि कई बार एक अच्छी शाम, एक अच्छा गाना और आपके अपने फेवरेट इंसान से दो बातें, बस इतनी सी चीजों में भी पूरी कहानी बदल जाती है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये था इश्क शायराना। अक्टूबर अभी अभी नया है तो देखते रहिए, हो सकता है इस महीने आपकी जिंदगी भी कोई खूबसूरत सा नया सीन आपको दिखा दे। तो अब इस सीन में थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करते हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये था इश्क शायराना।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्ट्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियां, यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियां बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

फिर से स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा। और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि ये शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

तो ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई दे, कोई पुराना गाना बजे तो वो इंसान अचानक आपके पास बैठा हुआ लगे। यही है रेट्रो इश्क, पुराने वक्त की कहानी लेकिन एहसास बिल्कुल आज का। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब इस कहानी को एक खूबसूरत धुन के साथ विदा करते हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, संभाल कर रखी जाती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। स्टे ट्यून, अगली

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बात बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी

केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाइज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद
0: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब रखा।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहां ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहां हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूं, कभी मैं

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं। पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम,